ये समय आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य आत्मचिंतन में लगाइए। नहीं तो भाई यही झांकी है कि हो अति दीन महा दुख पावत और लोग कुटुंब को न मुह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने कि जो घर के वयोवृद्ध जन होते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं। उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए कोई दो घड़ी उसके उसके पास बैठकर प्रेम से बात कर ले, और वो दो घड़ी प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं होता। और जीव अपनी दुर्दशा का विचार करके रोता है, पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब रसना थकी न बोल्यो जाई, जब ऐसी स्थिति आए तब इसका विचार करने का क्या लाभ है। मैं भाई बल देकर एक बात कहा करता हूं, सही निर्णय तभी सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चूका तो कितना भी सही निर्णय क्यों ना हो, भजन करने से ज्यादा सही निर्णय कोई नहीं है, लेकिन समय चूक जाने पर यदि आप भजन करना आरंभ करते हैं तो उसका वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। और कोई कहे कि भाई आप संत लोग कहते हैं कि अंत समय भगवान नाम का स्मरण करने से गति हो जाती है, अरे गति तो हो जाती है, गति तो हो जाती है, अरे ये जीवन मिला इसका सुख तो पाते, इसका आनंद तो लेते, ये जीवन का एक एक दिन सुख स्वरूप हो जाता, जीवन का एक एक क्षण उत्सव स्वरूप हो जाता यदि समय रहते चेत जाते, समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम शंकराचार्य कहते हैं ना, अरे मूड मती, जब समय चला जाएगा मुख में दांत नहीं रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा, क्यों उस समय की, क्यों उस अपनी दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है।

और फिर कहते हैं मेरी बात सुहात न काहू ताते उपजत है उर्दाहू। अब मेरी बात भी किसी को नहीं सुहाती और अपनी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय और जलता है, ताते उपजत है उर दाहू। और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं।

अभी संभल जाइए भाई, मत आने दीजिए जीवन में वो कठिन समय। पकड़िए प्रभु के चरण। संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है, और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलूं, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा नहीं है, पराए से कोई आशा नहीं है। और संतों का सिद्धांत है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कई बार आपसे मैंने कहा, भाई संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और सुख की आशा किससे होगी, जिसे आप अपना समझेंगे? एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने समझाया था, व्यास राधिका रमण बिन

तन बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं, झूठे कुटुंबी के रंग भीनो और सांचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है, कहां लग कहूं मूर्खता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी बुद्धि पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन गति लटी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी न करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तो विषय में रुचि कैसे होगी। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रसबल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल है। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है, वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती है और अधिक दुखदायी स्थिति क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है, लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती और कभी कभी व्यक्ति इस बढ़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का और मैं कहूंगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार करे तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है, जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है, ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब तन पर यौवन हो उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। मैं तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है, भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है और मन लगे ना लगे तो भी करना है, भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत

और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते हैं महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी खाट न छाणी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे, लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है वो स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात में समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है। विषय का त्याग ही विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं, मन जानता है कि यह अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उस ओर जाता है, बलात् कोई उस ओर ले जाता है मन को। ना करो तो भी मन दुख पाता है, करो तो भी मन दुख पाता है, पर विचार करना चाहिए, अगर ना करके भी दुख है और करके भी दुख है तो फिर ना करके ही दुख पा लेना चाहिए। कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है भाई। मैं तो इसलिए आपको बीच बीच में कह देता हूँ, स्मरण करा देता हूँ कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन डिंग डरिबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रिया आ गई, कब बाल सफेद हो गए, रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा, नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया, वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहु न कराही, बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता। बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही, किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने, बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह कह जाए। तो भाई देखते ही देखते ये स्थिति आ जाएगी। मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा, तन की गति तो भाई वही होनी है, वही होगी, इसलिए काल चुरैया चुग रही। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते हैं अरे भूले भूले कोई भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी, व्यास जी ने कहा मूंड मुंडाए की लाज नहीं भइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है, माथे पर ये हरि मंदिर है, गले में तुलसी की कंठी है, हाथ में जप की माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी, बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

और यह रुचय मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है, सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूँ, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचय मुख नाम ना आवे, तो भी संसार रुचता है पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे। सुनता हूं शास्त्रों पुराणों की कथाएं, सुनता हूं कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। भजन आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किसो, श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजही जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है। मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। पशु पंछी ताको समय मानत अपनो राई, मन लागो अति झूठ सो तज सांच ही सुख मूल। मन लग गया इस झूठ में, अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई, आज तो आप में बल है, शक्ति है, सत्संग में जा सकते हो, दो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो। कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और

हरि का नाम रटले री रसना, फिर अंत समय ही हिली ना हिली। अरे नेक सी पीड़ा कहीं तन में हो जाए, सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सत्तन में कष्ट हो, मन में कष्ट हो, इसलिए आज ये सुख का जो समय है इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए। भजन करिए, और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं, और

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन जीर्ण होता है, संसार तो यही सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब तो भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो, संसार की शिक्षा तो यही है भाई मन लगाकर काम करो, हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो समय पर करो मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगाकर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन है सचु पाए। राज महाराज जी ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

आपके हाथ में जो वाणी है उसके बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर चार पंक्तियां लिखी है श्री ध्रुवदास जी की हैं, प्रार्थना की है युगल चरणों में। सत्र का विश्राम इन्हीं पंक्तियों से किया करेंगे।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: शंभु शंभु शंभु शंभु शिव महादेव
1: शिव महादेव।
0: और रेडियो महारानी भी सुनते रहिए क्योंकि उसमें काफी हटके चीजें आती है, इसीलिए उनका टैगलाइन भी कुछ हटके है।

0: The most powerful leadership tool you have is your own personal example. You are listening to the thoughts of Mr. Sonu Sharma, who is a life coach and motivational speaker. Keep listening, Radio Maharani, Kurt Hatke.
1: हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये सही लग रहा है, लोगों ने मना भी किया, फिर भी हमने किया और उसमें हम फेल हो गए। अब वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो दुनिया हमको याद दिला रही है आ करके, है ना। जैसे हम कुछ और करने के बारे में सोचते हैं तो लोग हमको वाला फेलियर याद दिला देते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था, क्या हुआ। तो बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। चलो बाहर से जो अटैक हो रहा है उसको तो फिर भी हैंडल कर सकते हो, उनसे लड़ लो झगड़ लो तो वो भी कहेंगे यार क्या लड़ाई झगड़ा करना है, छोड़ो बात मत करो इनसे इसके बारे में। बट अंदर जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हैंडल करें, राइट। सारा खेल यही है कि हमारे अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं, उससे कैसे बचोगे। आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे मूवी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ देर के लिए आप उसको भूल सकते हो, ठीक है ना। दारू पी ली कुछ देर के लिए, भूल गए, फिर याद आ जाएगा। जैसे होश में आओगे फिर से याद आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी। तो खुद से कैसे बचे, समझ रहे हो। यहां पे जो लिखा हुआ है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसका मोटिव यही है कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है। ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है, अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर उसको कैसे फेस करें। क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है, समझ गए ना। और एक्चुअल में बाहर कोई अटैक होता नहीं है, होता अंदर ही है। बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो, अगर इस बात को हम समझ पाए तो। आप चाहो तो अपने मन में बोल दो अरे ये तो है ही ऐसा, समझ गए, असर होना बंद। आपको नहीं इसने ऐसा क्यों बोला, तो असर ज्यादा होगा। जैसे कोई अगर कोई आपको पता है कि कोई पागल है, वो आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो क्या उसके उसके बारे में आप बैठ करके सोचोगे 10 दिन तक कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना, या उल्टा सीधा आपको बोलना, या आपको तंग करना। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है उसका बेसिक नेचर है, कोई बात नहीं, तो जैसे आप अंदर से बोल देते ना कोई बात नहीं, ये क्या फर्क पड़ता है, उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बट ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जो आंसर है वो ये, डू यू पीपल वॉन्ट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूं डीपली, कि हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलतियां क्या हो सकती है। गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहां की कहां पहुंच जाती हैं, है ना। अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं, मैं कितनी बेवकूफ हूं, ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में, हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूँ चीजों को। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट। जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट। इसको ध्यान से समझ लो। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको पहले तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दी थी इस रिलेशनशिप में, मे बी कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि अब जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, स्पेशली बड़े डिसीजंस तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कौन सा कपड़ा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या है वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं। 10 दुकानों में जाएंगे, ट्राई करेंगे, ₹100 के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे, ₹100 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ₹20-20 के पीछे कितनी किचकिच करेंगे। और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है, उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं, करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना। स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है इसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज अ वेरी वेरी वेरी क्या कहूँ, वेरी नो कमेंट्स। तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो मुझे गड़बड़ लगती है वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया, अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे, और उसने हाँ कर दी, ठीक है बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है। आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ, एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का, इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है। गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को दे सकते हो, ये पति को किसको कबाड़ी में दोगे। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो इसको पकड़ के रखो, दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से ये सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ऐसा। मैं क्या कहता, अरे करो करो करो, और पीने वान करा, लगा दो बियर, लगा ये करो, बाइक ना लटा के मोड़ेंगे, मैंने सारे काम करे, ऐसा नहीं करे, लटाए गए और खुद भी लेट गया, और पीछे वाला कहता यार मैंने क्या गलती की, मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है, आप समझ रहे हो। तो ये सब काम मैंने करे हैं, तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, मैं कह रहा हूं समझ लो कि करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो, अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है तो मैं आपको कैसे बोलूंगी गलतियां मत करो, गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया, समझ गए, मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मिल रहा है आपको जवाब, मिल रहा है। एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं, तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इनटू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो, दैट इज इंपॉर्टेंट।

0: मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया। ये गलती नहीं है। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना। तो आप फेल हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है। अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है। कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके। हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं, अपने आप को ये बोलो। आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए। अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी, जिसको आप बड़ी समझ रहे हो। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी। तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में, तो क्या ये छोटी क्वालिटी है? डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? मतलब पेशेंस इज सो बिग यार। पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही डिसीजंस ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो। आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है ना?
1: माय क्वेश्चन इज दैट what how should one maintain mental stability and balance of mind in situations of life and death?
0: बहुत भारी सवाल है वैसे तो, बट ये सवाल क्योंकि हर एक को फेस तो कभी ना कभी करना ही है। जो लोग आपके आसपास में जिनको बहुत प्यार करते हो उन्होंने मरना ही। मैं देखो कितने आराम से बोल जाता हूं, बिकॉज़ मेरे लिए मैटर नहीं करती। अब ऐसा क्या हो कि आपके लिए भी मैटर ना करे, समझ गए ना? वो इंसान जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है, वो मर सकता है ना आज, हम खुद भी मर सकते हैं। तो कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो। ऊपर ऊपर से तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता ऊपर से नहीं होगा, अंदर से नहीं। ऊपर और अंदर का मतलब हमको समझ आ रहा है? देखो इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, व्हाट इज आउटर व्हाट इज इनर। आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, रो रहे हो, तो ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भी असर हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी है। तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, दुनिया जो आपके बारे में कहती है उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, हेल्थ से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, ये सब चीजें ऐसी हैं जो होनी होनी है आप लोगों के साथ। अभी हो सकता है समझ नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी धीरे धीरे समझ आएगी ये सारी बातें। उसके अलावा आपके आसपास में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तब भी आपके ऊपर असर ना हो। और भगवान ना करे अगर वो इस दुनिया से चले गए, उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। क्या ये हो सकता है? पहले तो सवाल ये है, क्या लगता है आपको, हो सकता है नहीं हो सकता है? सच बोलो, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए बोलना है। नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। क्यों कह रहे हो कि नहीं हो सकता है? देखो, धीरे धीरे अगर आपको ये समझ आ जाए, अगर ये नहीं समझ आया तो नहीं हो सकता। मान लो कि जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं, एक बार को मान लो कि क्या पता वो सच हो, मैं सच बोल रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आए। मुझे समझ आ गई है इसलिए मेरे लिए वो सच है। वो क्या है? अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। बैलेंस का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है? दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। गेम है जिसमें मैं एक प्लेयर हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूं उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका एक्चुअल में मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है। ये बात अभी हमको समझ नहीं आती है। अगर ये बात हमको समझ आ जाए, जो मैं रोल की बात करता हूं, मैंने अपने हाउ टू कंट्रोल

0: माइंड वाले में भी एग्जांपल दिया था, एक रोल का एग्जांपल दिया था कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और आप एक्चुअल में कुछ और हो, तो आपको समझ आए कि मैं हूं कौन और जो मैं एक्चुअल में हूं उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है इस खेल में उसका कोई असर नहीं होता है। तो बाहर से देखने में लग रहा होगा कि आपके ऊपर असर हो रहा है, शायद आंसू भी आ रहे होंगे, शायद आप हंस भी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, सक्सेसफुल हो रहे होंगे, लेकिन अंदर से यू ऑलवेज बी अनटच्ड। अगर ये नहीं पकड़ में आया तो कोई सोल्यूशन नहीं है ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो। क्योंकि क्या होगा, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये गेम है, लाइफ एक गेम की जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े हो तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो ज्यादातर गलत ही होंगे। क्यों गलत होंगे, जबकि आपकी सलाह सही होगी, आप अपने दोस्तों को सलाह दोगे वो सलाह सही होगी, लेकिन खुद को सलाह दोगे वो गलत होगी। क्यों, मैं बीच में आ गया ना, बस इसको ध्यान से समझ लो। ये बात पकड़ में आ रही है ना, कि जब हम सलाह देते हैं किसी और को तो बड़ी सही सलाह देते हैं, जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो हम बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमने अपने आप को उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर दिया है। जैसे गेम खेलते खेलते सपोज आप भूल ही गए तो क्या होगा, एकदम से वो बंदा मरा या उसको चोट लगी या उसका पैर टूटा, हड्डी टूटी, तो आप रोने लग जाओगे, चीखने चिल्लाने लग जाओगे। मतलब वो क्या रहा है, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए उस गेम में, डिटैच होकर के उस गेम को नहीं देख पा रहे हैं। इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा, हम भूल ही गए हैं कि ये खेल है, ठीक है ना, खेल में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, लाइफ को एक खेल की तरह देखो। मेरे लिए लाइफ कैसी है, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट डज लाइफ मीन टू मी, मेरे लिए जो बॉडी है ना और जो माइंड है, माइंड मतलब समझते हो कि जो प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू ये बॉडी काम कर रही है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, क्लियर है ना, जो हमारे थॉट्स हैं वो सॉफ्टवेयर के जैसे हैं, बॉडी हार्डवेयर के जैसी है, जैसा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है वैसी बॉडी एक्ट कर रही होती है, सॉफ्टवेयर निकाल दो बॉडी में से तो बॉडी कैसे एक्ट करेगी, क्लियर हो रहा है ना। तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, तो मेरे लिए लाइफ क्या है, मैं दोनों से अनटच्ड हूं, ना तो मैं हार्डवेयर हूं ना मैं सॉफ्टवेयर हूं, मैं इन दोनों को क्रिएट करने वाला हूं। बन गया ना खेल, पहचानना की जरूरत ही नहीं, आप हो, आप इस बोतल से अलग हो, इसमें पहचानने की क्या जरूरत है, आप बोतल को देख रहे हो, बोतल आपको नहीं देख रही है, क्या ये फैक्ट है या कोई इल्यूजन है, फैक्ट है भाई, आप अपनी इस बॉडी को देख सकते हो लेकिन ये बॉडी आपको नहीं देख सकती, ये फैक्ट है या इल्यूजन है, फैक्ट है, तो फैक्ट के बारे में क्या सोचना है, क्लियर हो गया। तो मैं जानने वाला हूं इस पूरे के पूरे खेल को, तो अब इससे क्या होगा, देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट, एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के, लाइफ आपके लिए खेल जैसी होगी, मतलब एक कमाल का खेल। अब खेल क्या है, कि किस तरह से इस हार्डवेयर को, मतलब कि इस बॉडी को, और इस सॉफ्टवेयर को, मतलब कि माइंड को प्रोग्राम किया जाए, इस बॉडी को डिजाइन किया जाए, और इसके आसपास में जो रिलेशनशिप्स हैं, जो बिजनेस है, जो काम है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं इस सोसाइटी के लिए या अपने लिए या ये वो, सबको कैसे परफेक्टली किया जाए। तो परफेक्ट कभी हो नहीं सकता, लेकिन नहीं भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खेल है, समझ पा रहे हो। तो धीरे धीरे, अगर और कुछ नहीं तो यार मेरी इतनी सी बात को समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है। अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या, ये बताओ मुझे, आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपका गया कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो, फिर 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो, पहले दिन में क्या 10वें लेवल पे पहुंच जाते हो, ऐसा नो, नहीं पहुंचते हो, टाइम लगता है ना। लेकिन क्या आप पहले दिन में 10वें लेवल पे नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो, आप उसको परफेक्ट करते रहते हो, बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो, धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है, आप 5वें पे जाते हो, 10वें पे जाते हो, 20वें पे। अब जिंदगी के खेल में वीडियो गेम में क्या फर्क है, वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है, एक एंड आ जाता है कि ये 50वां लेवल है, इसके आगे और कुछ नहीं है, जिंदगी के खेल में कोई एंड ही नहीं है, देयर इज नो एंड, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। that perfection is just a word which does not exist in reality. That is the beauty of life.
1: नहीं तो मैं करता क्या? समझ रहे हो? नहीं तो आप करोगे क्या? अगर परफेक्ट हो गए तो अब खेल में मजा ही नहीं रह गया।
0: जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तो उस खेल को हम बेटर करते चले जा रहे हैं, और बेटर, बाहर नहीं, अपने अंदर। और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया, तो आपको यह भी पता होगा मेरे को किस आदमी से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। मतलब अब आप अवेयर हो गए उस खेल में। अभी आप अवेयर नहीं हो, अभी आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको यह तक पता होगा कि इस खेल में अगर मैंने ये उल्टा बोला अपनी वाइफ को, तो वहां से एक रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से हमारी 4 दिन तक लड़ाई चलेगी। क्यों बोलना है? मत बोलो। क्यों ऐसी बातें बोलनी है जिसकी वजह से कलेश होने वाला है? या उन्होंने कुछ बोल दिया तो चुपचाप मुंह नीचे करके वहां से निकल जाओ। कितना मजा आएगा खेलने में। मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही होंगी, बीमार हो गए, अभी क्या होगा, बीमार हो गए तो रोने लग जाओगे, या थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, तो क्या होगा, दुखी हो जाओगे। दुखी क्या होना है, खेल है, खेल का पार्ट है। बीमार हो गए, उस बीमारी को देखो। समझ पा रहे हो? क्या मुश्किल है करना? बहुत आसान है, अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो। अपनी उस बीमारी को डिटैच होकर के देखो कि मेरे हाथ में एक रिमोट है, यानी कि माइंड, और ये बॉडी है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, और ये बॉडी बीमार हो गई, अब मैं क्या करूं? अब उस रिमोट में क्या ऐसा कोई बटन है जिससे या तो बीमारी ठीक हो, या वो बीमारी दोबारा ना हो, या अगर बीमारी पता है कि हो गई है और इतने दिन लेगी ठीक होने में, और उसका उसकी कोई दवाई अभी बनी नहीं है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर जिसको वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, तो मैं क्या करूं? चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं, खेल है, लेट इट बी, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, 10 दिन में गायब, समझ गए? देन यू विल हैव पेशेंस आल्सो। ठीक है, खेल चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? खेल में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई, क्या फर्क पड़ता है? जो अच्छी है आज कल बुरी भी हो सकती है, जो आज बुरी है कल अच्छी हो सकती है। खेल की तरह देखो, बिजनेस को खेल की तरह देखो, लाइफ को खेल की तरह देखो, अपने आप को बेटर बनाने के बारे में सोचो। ये हम नहीं सोचते हैं, बस हम ये सोचते हैं कि जो हमको चाहिए ना वो फटाफट से हमको मिल जाए, तो उस चक्कर में आप चिंदी बन जाते हो। बुरा लगेगा सुनने में, पर चिंदी बन जाते हो। समझ ही 5-10 हज़ार रुपए वाली बन जाती है। उस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, उस वजह से हम लाइफ में दुखी रहते हैं, हम नीचे धंसते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमारी सारा जो सुख दुख है वो चीजों से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, बाहर जो चीजें उससे रिलेटेड है। सारा कंट्रोल दुनिया के हाथ में है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं। आ रहा है ना पकड़ में? चीजें आ गई चली गई, क्या फर्क पड़ता है? खेल है, समझ गए? आज ये बॉडी है, इस बॉडी के आसपास में और बॉडीज है, कल एक बॉडी उसमें से कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है? खेल है। ये धीरे धीरे समझना है आपको इसको, ये बॉडी कम हो गई चाहे दूसरी बॉडी है, क्या फर्क पड़ता है? खेल है। एक बीमार हो गई फिर ठीक हो गई, समझ रहे? कितना मतलब मजेदार है, इट्स फनी एक्चुअली, अगर आप इसको लाइट हार्टेड होकर के देख पाओ तो। आपके लिए एक्चुअल में दूसरों की लाइफ तो फनी ही है, बस अपनी लाइफ ही सीरियस है। अरे पड़ोसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपके लिए फन है। अपनी लाइफ में जरा से भी कुछ हो जाए तो ये क्या हो गया मेरे साथ में, क्या मूर्ख वाली हरकतें कर रहा हूं। बी मैच्योर, बी वाइज, समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। बिजनेस में लॉस लग गया, मान लो बहुत बड़ा लॉस लग गया, अब लग रहा है कि बेटा कल सड़क पे आने वाले, क्या हो गया? खेल है। अब देखते हैं अगली चाल क्या होगी, मुझे खुद भी नहीं पता कि अगली चाल क्या होने वाली। अरे मजा आ गया, खेल है। समझ रहे हो? यही तो खेल का मजा है, मुझे नहीं पता अगले कदम पे क्या होने वाला, यही तो एडवेंचर है। देखो एक वीडियो गेम है जिसमें जो लेवल आप क्रॉस कर चुके हो उसी को बार बार क्रॉस करने में मजा आता है, या अगले लेवल पे जाने में मजा आता है। ये बात लोगों को समझ नहीं आती है रियल लाइफ में। जैसे जिंदगी जी रहे थे आज से 10 साल पहले, आज भी वैसे जी रहे हैं, रिपीट मोड, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, रिपीट कर रहे हैं, क्या मजा है। सेम लेवल पे, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है सारे के सारे, उनके पास जाकर के बैठोगे खुद थके हुए हैं, आपको भी थका देंगे।
1: लाइफ नहीं नजर आएगी, बॉटल जैसे है, समझ गया ना? बॉटल मुर्दा है ना, मुर्दा है ना, इसके अंदर जान नहीं है ना। लोगों के अंदर जान है क्या? अरे नहीं, बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान होगी, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिलेंगे। बच्चों के साथ खेलेंगे तो खुल के खेलेंगे, काम करेंगे तो खुल के करेंगे, जो कर रहे हो खुल के करेंगे, इश्क करेंगे तो खुल के करेंगे, कमाल के आशिक होंगे, समझ गए? इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए ये खेल है। लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकती है, सोच सकते हैं? सोचते ही नहीं, लोगों को सोचने में डर लगता है। हो सकता है, बहुत आसान, देख सकते हैं मेरी आंखों में, झूठ नहीं बोल, बहुत आसान है। अगर खेल समझ जाओ तो, खेल समझ आए तो, समझ गए ना? मेरा पति है, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, अब मुझे सारा कुछ याद आ रहा है, उसने पहले भी वो किया था, अब जिस बात पे हमारी लड़ाई हो रही है वो तो हम भूल ही गए हैं, हमारी बहस किसी और बात पे हो रही है, अब वो सारा कुछ आ गया, मैं क्या करूं, अब वो भी चीख रहा है मैं भी चीख रही हूं, समझ रहे हो? ये क्या गेम चल रहा है यार, इसको आराम से समझो, इसको खेल की तरह देखो। लग गई तो क्या हो गया, लगी हुई है लाइफ में, सबकी लगी हुई है, क्या हो गया? खेल है, खेल है जी, अभी लगी हुई है, कल बेटर हो जाएगी लाइफ, जरा तो कुछ अच्छा हो जाएगा, आज जो जॉब है वो अच्छी नहीं है तो आज बुरी हालत है, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है जी, पार्ट ऑफ लाइफ है, कल एक अच्छी जॉब लग जाएगी, हम एकदम से खुश होने लग जाएंगे, फिर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये गेम है, बी एडवेंचरस, बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ। अगर ऐसे आप बन सको, जो बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कहां है फियर ऑफ डेथ, बताओ? इफ यू नो दैट कि ये बॉडी

यह भी नहीं पता कि क्या बचता है क्या नहीं बचता है और मैं हूं कौन, यह नहीं पता है, तो फियर ऑफ डेथ निकल जाता है। कोई और भी अगर गया तो क्या गया, बॉडी गई ना, कुछ है जो नहीं मरता है। और वो हमको समझ आ जाए कि वो जो कुछ है इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है और कुछ नहीं है, बाकी सब मरता है, सब मरता है जी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मरता। कुछ ऐसा है जो पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में, जब से दुनिया थी, है और जब तक रहेगी, वो नहीं मरा। अगर हमको समझ आ जाए कि मैं वो ही हूं तो तब ये खेल कैसा होगा, समझ पा रहे हो? मतलब इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कैन नॉट डाई, एंड इवन इफ आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी, दिस कैन नॉट सर्वाइव, दिस हैज टू डाई, इज द पार्ट ऑफ द गेम।

0: आज मैं आपको बताता हूँ हेलमेट ना पहनने के दो फायदे।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
0: पहला फायदा, आपके ऊपर मूवी बनाई जाएगी क्योंकि सार फूटने से आप गाज नहीं बांध सकते हैं।
2: बहुत तेज हो रहे हो।
0: दूसरा फायदा, आपकी पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान हो जाएगी क्योंकि हार सिग्नल पर वो आपको रोक ही लेंगे।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: या।

शानदार सुरै के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली सिप लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर इस शो को, जहाँ पर आपको मिलता है एंटरटेनमेंट का डबल डोज। आपके शहर में आज वेदर और ट्रैफिक की क्या अपडेट है ये भी लेकर आई हूँ, साथ ही सोशल स्यापा से लेकर क्या कुछ खास इस बारे में बात करेंगे। तो बस एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर। ये ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
2: करते रहे, वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से लौटा ही मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 31 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 20 डिग्री रहने वाला है, विंड स्पीड होने वाली है 11 और ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 30%। एंड बेसिकली डे आज सनी सनी रहने वाला है, यानी कि अच्छी खासी धूप और गर्मी आज आपको महसूस होने वाले। तो बस यही कहना चाहूंगी, इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: डियर एल्डर्स, नेवर क्लिक ऑन लिंक्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। कभी अपने पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, OTPs एंड KYCs को मिठाई की तरह ना बांटें। स्टॉप, थिंक एंड वेरीफाई।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजेंटली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई मॉर्निंग एक्सप्रेस की तरह ही एक मजेदार फटाफट से अपडेट लेकर आ गई हूँ। एंड अपडेट ये है, ट्रेन में ट्रेवल अब और भी ज्यादा पीसफुल होने वाला है, बिकॉज रात का सफर अब सच में सुकून भरा होगा। क्योंकि ट्रेवलर्स के लिए ना एक अच्छी अपडेट लेकर आई हूँ। इंडियन रेलवेज ने नाइट ट्रेवल को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रूल निकाल दिया है। अगर इस नए रूल की बात करें तो आइए चले जानते हैं आखिर नया रूल है क्या। तो भाई नया रूल ये है, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक कोई भी लाउड म्यूजिक नहीं सुन सकता है, साथ ही फोन पर जोर से बात नहीं कर सकता, सो दैट कि आपके साथ जितने भी पैसेंजर उस ट्रेन में हैं उनको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। और इसके फायदे बहुत सारे, पैसेंजर को पीसफुल स्लीप मिल सके, नॉइज डिस्टर्बेंस को कम किया जा सके, साथ ही लॉन्ग जर्नी और भी ज्यादा कम्फर्टेबल बन सके। तो भाई यही कहना चाहूंगी, पब्लिक प्लेस में कम्फर्ट तभी पॉसिबल है जब सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेन में ट्रेवल करें थोड़ा वॉल्यूम लो रखिएगा और साथ ही दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। एंड इसी के साथ बस यही कहना चाहूंगी कि एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, जो है खास आपके लिए मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: Dear elders, never click on links from unknown senders to protect yourself from social engineering attacks. Kabhi apne passwords, bank details, OTPs and KYCs ko mithai ki tarah na baante. Stop, think and verify.
2: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
3: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
4: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
3: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
0: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

हम सबकी ना कोई आदत जरूर होती है, लेकिन क्या आपको पता है एक छोटी सी आदत कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। रेडियो महारानी 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज आपको मैं एक ऐसी आदत के बारे में बताना चाहती हूँ, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये आदत इतनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। दरअसल एक इंसिडेंट सामने आया जहाँ पर 21 ईयर्स ओल्ड गर्ल नेल बाइटिंग की हैबिट की वजह से इतना सीवियर इन्फेक्शन खुद को दे बैठी कि फिंगर लॉस होने तक का रिस्क बन गया था। और अगर इस कंडीशन की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेडिकली इस इन्फेक्शन को कहा जाता है ऑनिकोफेजिया। और अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ कि ये आखिर है क्या, आपने कभी देखा होगा कि आपके नेल के आसपास ना एक छोटी सी स्किन होती है, जब वो निकल जाती है उस जगह से तो बहुत पेन होता है और वहीं डेवलप हो जाता है फटाफट से इन्फेक्शन। एंड अगर ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है जिसे जरूरत पड़ती है एक मेडिकल ट्रीटमेंट की। इसीलिए नेल बाइटिंग को माना जाता है बहुत ही खराब हैबिट। एंड कई लोग नहीं मानते हमेशा नेल बाइटिंग करते, तो आपको ये बता दूं कि कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। पहली चीज तो बैक्टीरिया डायरेक्टली बॉडी में एंटर करते हैं नेल बाइटिंग के थ्रू। एंड सेकेंड थिंग, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, नेल्स और स्किन डैमेज हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ना कई लोग एक्सक्यूज देते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तब जाके हम नेल बाइटिंग करते हैं, एंजाइटी होती है तब जाके नेल बाइटिंग करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होगा। नेल शॉर्ट और क्लीन रखिए सो दैट कि आपको मौका ही ना मिले नेल बाइटिंग का। एंड सेकेंड थिंग, बिटर नेल पेंट या फिर ऑल्टरनेटिव ट्राई करें, क्योंकि जब भी हम नेल्स पे कुछ ऐसी चीज अप्लाई करते हैं ना तो हमारा खुद का मन नहीं करता उन्हें टच करने का। तो कुछ इस तरह की चीजें आप लोग कर सकते हैं। एंड यही कहना चाहूंगी, हैबिट्स छोटी होती हैं पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आपको भी नेल बाइटिंग की हैबिट है ना, प्लीज इसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ में रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM को छठ।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

शानदार सुर के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर मैं आज अकेली नहीं हूँ। आपको खुद को साइबर स्कैम से किस तरह से बचाना है, बस वही टिप आपके लिए लेकर आ गई हूँ। दरअसल इन दिनों ना एक नया स्कैम मार्केट में आ गया, अननोन मैसेज और बड़ा नुकसान, यही मोटिव है स्कैम का। तो अगर बात की जाए साइबर स्कैम की, आजकल साइबर फ्रॉडस्टर ना हर तरीके से ट्राई करते हैं कि लोगों को पागल बनाया जाए। ठीक उसी तरह से एक नई ट्रिक उन्होंने यूज किया है। एंड ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको एक सिंपल सा मैसेज आएगा हाई डियर से। तो भाई पहले तो नॉर्मली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी एंड देन जैसे ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी एक फेक पेमेंट का अलर्ट आपको आ जाएगा। बेसिकली नेटफ्लिक्स या फिर आपके UPI नाम पर लिंक भेजे जाएंगे। सो आपको लगेगा कि ये एक जेन्युइन सोर्स है एंड आप उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया आपको हो सकता है बहुत ही बड़ा नुकसान। और अगर बात की जाए स्कैम की, तो चलिए पहले ये जानते हैं कि आखिर स्कैम में होता क्या है। पहले आपको फेक डेबिट ट्रांजैक्शन मैसेज भेजा जाता है, लिंक पर क्लिक करने को बोला जाता है, डिटेल्स डालते ही बैंक अकाउंट एक्सेस ले लिया जाता है। सो देखने में तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है जो हम अपने डेली बेसिस पर करते हैं अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है। लेकिन ये सबसे बड़ी वार्निंग है कि ये आपके कोई फ्रेंड नहीं, ये हो सकते हैं साइबर, यानी कि ये हो सकते हैं फ्रॉडस्टर्स। तो आपको किस तरह से इनसे बचना है, सबसे पहले तो अननोन नंबर के मैसेजेस इग्नोर करना सीखें, किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक कभी ना करें, बैंक डिटेल्स OTP कभी शेयर ना करें, पेमेंट अलर्ट को ऑफिशियल ऐप से वेरीफाई जरूर करें। यही कहना चाहूंगी, ऑनलाइन दुनिया में ट्रस्ट से ज्यादा जरूरी है वेरिफिकेशन। तो आप जितना वेरीफाई करेंगे उतना आप इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं। एक गलत क्लिक आपकी मेहनत की कमाई को रिस्क में डाल सकता है। सो स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बड़ी बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाए चलती है, लेकिन रिलेशनशिप में जब छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बन जाती है ना, तब दिक्कत हो जाती है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। दरअसल मैं आपके लिए कैसे इंसिडेंट लेकर आई हूँ जिसे कहा जा सकता है सोशल ज़ैपा। प्राइस की फाइट ने एक सीरियस मोड़ ले लिया। एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया जहां पर सिर्फ फ्राइज खाने पर ना कपल के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि ये सिचुएशन देखते देखते वॉयलेंस तक पहुंच गई। यानी कि सिर्फ बातों वाली लड़ाई नहीं थी, ये हाथापाई वाली लड़ाई। एंड देखते देखते जो कपल था उनमें से एक को हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। बेसिकली मैंने आपके साथ स्टोरी क्यों शेयर की, ये स्टोरी हमें ये मैसेज देती है कि छोटी बातों पर गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज द की ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। सो कम्युनिकेट कीजिए एंड साथ ही ओपन कम्युनिकेशन कीजिए। वॉयलेंस कभी सोल्यूशन नहीं होता, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। सो प्लीज अपने रिश्ते पे जरूर काम कीजिए। मस्ती मजाक अपनी जगह होता है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज और इमोशन को रिस्पेक्ट करना इक्वली इम्पोर्टेंट है दोनों पार्टनर्स के लिए। सो इस चीज का ख्याल रखिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो, सुन के जाओ।
3: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जा।
5: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।
6: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
7: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
6: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
8: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
9: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: इस पंजाब

कभी आपने सोचा है कि आपकी ये जो छोटी सी केयरलेस वाली हैबिट है बहुत बड़ा एक्सीडेंट करा सकती है। आज इसी पर बात करने के लिए मैं फिर से लौट आई हूँ आपके साथ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। जिस एक्सीडेंट की मैं बात कर रही थी दरअसल वो होता है कार डोर खोलने से। जब हम रैंडमली कभी भी गाड़ी से उतरते वक्त ध्यान नहीं देते और कार का दरवाजा खोल कर सीधा चल पड़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा वो छोटा सा दरवाजा बहुत बड़े एक्सीडेंट का रीजन बन जाता है। एंड रिसेंट ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो रिसेंट ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बिना चेक किए कार का डोर ओपन करना अब केयरलेसनेस कहलाएगी। और अगर बात की जाए इस इंसिडेंट की तो ये तब सामने आया जब एक रिसेंट केस में बाइक राइडर डायरेक्टली कार के दरवाजे सडनली खुलने से टकराकर जमीन पर गिर गया। तो हमें इस इंसिडेंट से ये सीख मिलती है कि डोर ओपन करने से पहले साइड मिरर चेक जरूर करें, पीछे से आ रहे व्हीकल का ध्यान रखें, रोड पर हर सेकंड अलर्ट रहना जरूरी है और सिंपल सेफ्टी हैबिट्स को अपनाएं जैसे कि ओपन द डोर विद केयर नॉट इन अ हरी। छोटी सी अवेयरनेस बड़ी एक्सीडेंट से बचा सकती है। और बस इसी इंसिडेंट के साथ में आज मैसेज ऑफ द डे भी लेकर आई हूँ, रोड सेफ्टी सिर्फ रूल्स नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगली बार जब आप कार से उतरें एक सेकंड रुककर चेक जरूर कर लीजिएगा कहीं आपके आसपास दाएं बाएं कोई आ तो नहीं रहा, और अगर कोई आ रहा है तो एक सेकंड रुक जाइए, उन्हें जाने दीजिए, फिर अपने कार का दरवाजा खोलिए और आराम से जाइए। आखिरकार आप अपनी मंजिल तक तो पहुंच ही गए ना, तो क्यों ना थोड़ा सा सेफ्टी के साथ पहुंचा जाए। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए पैरासोटैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
4: हाँ तो अर्ज किया है?
3: अर्ज
4: अभी करते हैं, सुनो।
3: इरशाद,
4: कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
3: वाह वाह वाह,
4: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
4: बस मेरी शायरी सुन लो।
3: फिर
4: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
3: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
4: अरे, बाय। हेलो।

0: है शाम जब तुम घर लौटते हो। माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाए और अपनों की हंसी को बचाए। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कदर करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सांबार का
1: इडली सांबर डोसा डोसा जी मेरा तो फेवरेट है इडली सांबर डोसा एंड मैं कभी नहीं स्किप कर सकती इस ब्रेकफास्ट को। लेकिन सोचेगा जरूर कि एक इडली आपको इतनी महंगी पड़ जाए कि दोबारा आप इडली की तरफ देखे भी ना। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो लेकर आई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर भाई एक इंसिडेंट लेकर आई हूँ। और इंसिडेंट ये है कि बैंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर को इडली खाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। दरअसल इन्होंने एयरपोर्ट के कैफे से घी पौड़ी इडली ऑर्डर की, जिसका बिल इन्होंने कि बहुत ज्यादा नॉमिनल होगा, लेकिन उसका बिल आया एक इडली का 315 रुपए। और जब इन्होंने ये बिल सोशल मीडिया पर दिखाया तो भाई बहुत ज्यादा ये रिसिप्ट जो है वायरल हो रही है। इतना ही नहीं, वायरल होने के साथ साथ लोगों ने कंपेयर भी किया है इस बिल को कि सिटी के जो दूसरे आउटलेट्स हैं वहां पर ये इडली कितने की मिल रही है। इन्हें आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पर ये इडली सिर्फ 90 रुपए की मिल रही थी, ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा इस एयरपोर्ट ने इस पैसेंजर से चार्ज किया। तो भाई अब सवाल ये उठा है कि क्या एयरपोर्ट फूड प्राइसिंग पर कोई कंट्रोल है किसी भी तरह का, या फिर रेस्टोरेंट अपने हिसाब से रेट्स डिसाइड करते हैं। तो भाई यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि एयरपोर्ट आउटलेट्स पर हमेशा रेंट, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होती है, इसलिए प्राइस भी हाई होता है। मान लिया इनकी बात, लेकिन भाई एक इडली 315 रुपए की, 150 भी नहीं यानी कि आधा भी नहीं, भाई 4 गुना मिला है यहाँ पर इनको इडली खाने का। जिसे देखकर ट्रेवलर्स भी कह रहे हैं कि कन्वीनियंस ठीक है, लेकिन इतना भी क्या महंगा करना एक इडली जो वर्थ ही नहीं है इतनी महंगी, उसे आप इतना महंगा करके बेच रहे हो तो आगे से कौन ही खाना खरीदेगा। तो भाई आप हमें जरूर बताएगा कि अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हो और आपको इतना एक्सपेंसिव बिल पकड़ा दिया जाता है तो आप क्या करेंगे। हमें बताने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पर वॉइस मैसेज भेजिए और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.67 म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फिर समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेडर लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रीकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: सचिन, ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा, रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाचकर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो, जैसी।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहे हैं आप, सुनो तो
2: इरशाद।
1: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
1: हाँ जी।
2: अच्छा,
1: और उन्होंने पूछा क्या?
2: क्या पूछा?
1: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

शानदार सुरक्षा के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आज अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। देखिए भाई, सुबह 7 बजे आई थी और अब 10 बजने वाले, यानी कि अब मेरा टाइम हो गया यहाँ से जाने का। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आज आऊंगी तभी तो कल आऊंगी ना, तो वही मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर। तब तक एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक जो खास आपके लिए, एंजॉय कीजिए आज का दिन। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वानाबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फिर समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। पर तुम शेडी लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रीकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: क्या बात कर रहे हो?
1: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
0: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
0: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
0: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?

शाम का भूला कभी कभी सुबह भी घर आ जाता है और उसको कहते हैं द मोस्ट वांटेड मुंडा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो आप सब? फरीदाबाद की गलियों से ये शो का नाम है और अब शुरुआत हो चुकी है। 10 से 11 रोजाना आता है, रोजाना मोनिक आता है, बट आज फिल्मी टॉनिक आरजे मोनिक है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए मैं आ चुका हूँ आप सभी के साथ। तो अभी आएगा मोनिक, डोंट वरी, फिल्मी फ्लेवर तो वही लेकर आएगा। मैं तो बस फरीदाबाद की बातें करने के लिए आ गया हूँ। और देखो, मंगलवार का दिन है और इसी के साथ साथ आज मेरे सामने एक ऐसी चीज़ आई जिसको मैं देख रहा था और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को वीकेंड पर ना मथुरा जाना था और फिर मैं सोच रहा था गाड़ी से जाऊँ या बस से जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो इतने में ये खबर मेरे सामने आती है और उसमें लिखा हुआ है कि 5 मई यानी कि आज से ही पलवल से कोसी और मथुरा तक 2 शटल चलने वाली है। तो जितने भी लोग रोजाना ट्रेवल करते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। और नॉर्थ रेलवे कह सकते हैं हम लोग, उन्होंने पलवल से कोसी कला और मथुरा तक 2 EMU शटल ट्रेनों का विस्तार जो होना था उसको मंजूरी दे दी है। तो ये दोनों ट्रेनें 5 मई से कोसीकला और मथुरा तक चलनी शुरू हो जाएंगी, मतलब कि आज से शुरू हो चुकी है। और अभी तो टेम्प्रेरी तौर पे 31 जुलाई तक चलाने का एक फैसला लिया गया है और फिर उसके बाद यात्रियों से जितने भी फीडबैक मिलेंगे और अगर लोगों की संख्या कम होगी तो इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो देखो, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि EMU सेवा आप लोगों के लिए फिर से शुरू कर दी गई है पलवल, कोसीकला और मथुरा तक। तो आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए फरीदाबाद पलवल रेल रूट पर। अगर आप रोज़ाना सफ़र करते हैं तो ये आपके लिए एक कह सकते हैं खुशखबरी है। तो चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। शाम को तो मैं वापस आऊँगा ही, मगर अभी थोड़ी देर बाद ही वापस आऊँगा। बस एक चाय पी के आ रहा हूँ, बस मैं यूँ गया और यूँ आया और फरीदाबाद के बारे में और भी ढेरों बातें होती रहेंगी मेरे दोस्त।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

क्या आपको मालूम है कि फरीदाबाद के अंदर बहुत सारे इको वन बन चुके हैं। इको वन मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे जंगल जिसमें आप लोगों को पेड़ पौधे मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप के पेड़ मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के आपको तुलसी भी देखने को मिल जाएगी और न जाने क्या क्या। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और अभी है चल रहा प्रोग्राम और उसका नाम है फरीदाबाद की गलियों से। और फरीदाबाद की गलियों से मैं आज हम लोग बात कर रहे हैं इको वन की। देखो इको वन क्या है, छोटे छोटे जंगल बनाए हैं ताकि जितने भी लोग सेक्टर में रहते हैं वो लोग उसका दौरा कर सकें, वो लोग उधर जाके साफ हवा ले सकें, क्योंकि ये प्रूवन है कि इको वन के अंदर का जो AQI है वो बहुत बहुत कम है, यानी कि बहुत साफ सुथरी हवा आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी। आपको इको वन ढूंढने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप लोग सिंपल गूगल पे जाइए, इको वन सर्च कीजिए इन फरीदाबाद, आपको बहुत सारे इको वन मिल जाएंगे। टोटल 13 इको वन बन चुके हैं और ऐसे ही ये आगे भी बनते जाएंगे। और मैं तो बस ये बोलूँगा, जैसे कि समर्थ नाम का एक लड़का है जिसने ये इनिशिएटिव लिया था, तो उनको तो हैट्स ऑफ है, बट मैं चाहूँगा कि और भी फरीदाबाद की जनता इसका इनिशिएटिव अपने हाथों लें और खुद से भी एक इनिशिएटिव लेकर छोटे छोटे इको वन बनाते जाएं, भले ही अपने घर के पास पेड़ लगाएं और अपने फरीदाबाद को और भी हरा भरा, स्वस्थ और सुंदर बनाएं। तो चलिए इको वन की तो बात हो गई, मगर इसी के साथ साथ आज कल फरीदाबाद में पेंटिंग हो रही है और वो पेंटिंग क्या दिखा रही है इसके बारे में भी करेंगे बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए एक ऐसा गाना जो आपको पुराने दिनों की याद तो जरूर दिलाएगा। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट वॉट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

बूढ़ी मियां और एक पुराना वाला गाना, दोनों का मिक्स मैशअप था ये गाना। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप लोग फरीदाबाद में अगर घूम रहे हो बल्लभगढ़ से बदरपुर की तरफ और आपने अगर ली है सर्विस लेन, तो कोई भी जो फ्लाईओवर है, भले ही वो बाटा का हो, ओल्ड का हो या फिर नीलम का, फिर बड़कल का, तो आप लोगों ने वहां पर चित्रकारी तो जरूर देखी होगी। नई नई पेंटिंग्स बन रही है वो भी देखा होगा आप लोगों ने। मैं देख रहा था इतनी भरी दोपहरी गर्मी में आर्टिस्ट लगे हुए थे, पेंटिंग्स कर रहे थे, एंड आई वाज लाइक वंडरिंग कि यार ये क्या बना रहे होंगे। तो देखो, इन रास्तों पर देश की गाथा दिखाई जाएंगी, जैसे कि बहुत सारे चौक हैं, अजरौंदा चौक फ्लाईओवर, फिर भड़कल फ्लाईओवर, और उनमें देश के जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो संस्कृति है उनकी झलक देखने को आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इन सबकी भी झलकें आपको देखने को मिलेंगी। और मैं देख रहा था भरी गर्मी में, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस कर रहा था, तो आर्टिस्ट को तो हैट्स ऑफ है ही। और इसी के साथ साथ अगर आप ये चित्रकारी देख के थोड़ा सा थक गए हैं, तो फिर आप नवो वन भी जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना इको वन, तो उसी तरह से मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे बन रही है सुंदर ग्रीन बेल्ट और उसका नाम दिया गया है नमो वन। और ये 600 मीटर जगह में बनाई गई है और बहुत ही ज्यादा सुंदर पार्क है ये। आप एक बार जाके देखिए, इधर बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, और जब ये पेड़ आज से आने वाले एक साल के अंदर बड़े हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद आप देखना कितनी हरियाली होगी और फरीदाबाद का AQI कितना ज्यादा कम हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते रहिए और भी अपडेट्स फरीदाबाद के बारे में देते रहेंगे। अगर आपको भी कोई बातें करनी है फरीदाबाद से रिलेटेड, तो शेयर कीजिएगा, नंबर है 9654896896।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: अगर आप लोग फरीदाबाद में रहते हैं तो आप एक चीज से पूरी तरह से वाकिफ होंगे कि जैसे ही बारिश होती है वैसे ही बहुत कुछ बदल जाता है। सड़कों पर पानी काफी बार जमा हो जाता था, अब वो साफ हो गया है, बट कई कई जगह पर बहुत सारा पानी जमा अभी भी रहता है। और इसके अलावा जहां पर अभी नई नई सीवर लाइन डाली जा रही है वहां पर तो कीचड़ का माहौल बन गया है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं फरीदाबाद की गलियों से। तो फरीदाबाद की गलियों से मैं हम लोग बात कर रहे हैं आज फरीदाबाद की उन गलियों के बारे में जहां पर पानी की निकासी के लिए नई सीवर लाइन डाली जा रही है, ताकि जब बरसात आए, बहुत तेज वाली बरसात आए, तो जितना भी पानी जमा होता था वो निकल जाए। बट अभी तो खुदाई हुई ही थी कि इंद्रदेव प्रकट हो गए बीच में अचानक से, और उन्होंने बरसात कर डाली, और फिर उसके बाद हुआ क्या, कीचड़ी कीचड़ कीचड़ कीचड़। देखो, दीज आर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ये चीज अवॉइड कर ही नहीं सकते, किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि बारिश किसी ने लिखी थोड़ी ना थी, मतलब अचानक से हुई है ना बेमौसम बरसात। तो चलिए इस बरसात वाले मौसम का एंजॉय कीजिए, आज और ठंडक है, कल से फिर से गर्मी शुरू हो जाएगी। और अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से शाम को 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
1: Mixing in the house.

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
1: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
2: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
5: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
6: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
5: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
7: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

इसी खूबसूरत गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। मैं फिल्मी टॉनिक आरजे मॉन, जहां बात करूंगा आज मैं बहुत ही चर्चाएं फिल्मी गलियारे की, फिल्मी पिटारे की, कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री के स्टार्स जिन्होंने क्रॉस ओवर इंडस्ट्रीज में अपने किरदार के जरिए धमाल मचाया, और कुछ किरदार ऐसे जो कि अलग अलग स्टार्स को निभाते देखा और उन किरदारों को एक अलग ही लेवल पर ले जाते नजर आए हैं बहुत बढ़िया एक्टिंग के जरिए। और वहीं कुछ डेब्यू इंडस्ट्री में ऐसे हुए हैं कि अपने डेब्यू से ही एक अलग पहचान बना दी, और ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड अपने किरदार की ऐसी छाप छोड़ी कि क्रॉस ओवर इंडस्ट्री से भी अच्छे अच्छे किरदारों के ऑफर्स मिलते नजर आए। और वहीं इंडस्ट्री कुछ ऐसी फ्रेंचाइज जिन फ्रेंचाइज ने हर किस्त में स्टोरी को एक अलग ही मार्क दिया कि अगली बार कहानी इससे भी बेहतरीन होने वाली है। तो ये सारी चर्चाएं करूंगा सिल्वर स्क्रीन से, कुछ ओडी प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन आगे सारी चर्चाएं करने से पहले, यानी कि बॉलीवुड का पिटारा खोलने से पहले, सुना देता कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी खूबसूरत गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फेमी फ्लेवर में फिल्म डॉनिक आरजे मॉल। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं जहाँ देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो 2008 से लेके अब तक फैंस के दिलों में छाया हुआ है और डेली कुछ नए किस्से कहानियां तो कुछ नए डेली पंथा ठहाके लेकर के आता है ये टीवी सीरियल जहां पे अलग अलग किरदारों के अलग अलग फनी एलिमेंट्स सबका दिल जीत लेते हैं। वही तारक मेहता उल्टा चश्मा से अगर पहले की बात की जाए यानी कि 90s के दौर की तब भी कुछ ऐसे टीवी कॉमेडी आइकॉनिक शोज रहे जिनको अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आया। जहाँ सबसे पहले बात करना चाहूंगा 1993 की जब देख भाई देख रिलीज हुआ और ये एक दीवान जॉइंट फैमिली के किस्से कहानियों ने सबको खूब ठहाके लगवाए जहाँ पे शेखर सुमन फरीदा जलाल देवेन भोजानी जैसे स्टार्स नजर आए। फिर बात करते हैं हम पांच 1995 से 1999 तक हम पांच ने सबको खूब हंसाया और सबके दिलों में अच्छी खासी जगह बनाई जहाँ विद्या बालन को अच्छा खासा मौका मिला स्पॉटलाइट होने का। उनका एक ऐसा मौका जहाँ उनके किरदार ने उनके हंसी के ठहाकों ने और उनकी कॉमिक टाइमिंग ने सबका दिल जीत लिया। वही तू तू मैं 1994 से 2000 तक इसको टेलीकास्ट किया गया जहाँ पे रीमा लागू और सुप्रिया हमें नजर आई। यहाँ पे इन दोनों की केमिस्ट्री नहीं आने की मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की जो केमिस्ट्री थी डेली की छोटी छोटी नोक झोंक थी इसने हर घर में हर दिल में एक अलग ही जगह बनाई। ऐसी और भी बहुत बढ़िया टीवी सीरियल्स रहे श्रीमान श्रीमती ऑफिस ऑफिस और फ्लॉप शो जैसे बहुत बढ़िया किरदारों के साथ सबके सामने आया जसपाल भट्टी जैसे शो को लेकर के आते जहां पर सोसाइटी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को अपने फनी अंदाज में ह्यूमर और क्रिटिक के साथ सबके सामने पेश करते थे कि एक अवेयरनेस भी होती थी और कहीं ना कहीं लोगों के दिल तक बात भी पहुंच जाती थी। ऐसी और भी चर्चाएं कुछ टीवी के चेहरों से कुछ बॉलीवुड के चेहरों से आप सबके लिए और भी लेकर के आता रहूंगा लेकिन उसमें कुछ और खूबसूरत से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ

0: की उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

किसी रोमांटिक गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ बॉलीवुड के गलियारों की कुछ चर्चाएं लेकर, जहाँ दोस्तों मैं बात करूँ बेहतरीन कहानी और बेहतरीन डेब्यू जोड़ी के बारे में, अनीत बड्डा और अहान पांडे के बारे में। बहुत बेहतरीन कहानी लेकर आया सयारा, और सयारा के गानों ने और लव केमिस्ट्री ने सबके दिलों को छू लिया, और इस कहानी में इन दोनों स्टार्स को रातों रात अच्छी गाजी फैन फॉलोइंग भी थी। जी हाँ, इस कहानी को बहुत पसंद किया गया था। इससे पहले अगर बात की जाए और कुछ ऐसे स्टार जिनके डेब्यू ने उनको रात रात स्टार बना दिया, सबसे पहले बात करूंगा देविका पादुकोण के बारे में, जहाँ उन्हें मॉडलिंग से शुरुआत, और ओम शांति ओम 2007 में इस कहानी ने उनके इस करियर को चार चांद लगा दिया। फिर बात करते हैं कृति सेनन के बारे में, 2014 की बात थी जब हीरो पंथी से उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा, और इसी कहानी के बाद जब मिनी ने किरदार निभाया तो नेशनल अवार्ड हासिल करके उन्होंने करियर को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाया। वहीं यहाँ पे कार्तिक आर्यन के नाम भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि प्यार का पंचनामा 2011 में जब कहानी को रिलीज किया गया तो इनके किरदार ने और इनके डायलॉग डिलीवरी के टाइमिंग ने सबको चौंका दिया कि एक इंडस्ट्री को नया स्टार मिलता नजर आ रहा है। वहीं सिद्धार्थ चतुर्वेदी की अगर बात की जाए तो एमसी शेरगिल का किरदार निभाया था गली बॉय में, जिसको 2019 में रिलीज किया गया उनके गली बॉय वाले किरदार को, यानी कि इस पिक्चर ने जब सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री करी अपने सभी जोनर से कुछ डिफरेंट कहानी थी, और डिफरेंट कहानी के साथ साथ डिफरेंट किरदार भी थे, तो यार किरदारों ने प्यार बटोरा था। वहीं एमसी शेरगिल वाले किरदार निभाने में सिद्धांत चतुर्वेदी को जो प्यार मिला, एक अलग ही फेम मिला, वो उनके लिए बहुत ज्यादा यादगार रहा, और ऐसे इन्होंने इंडस्ट्री में अपना कदम जमा लिया। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं आप सबके लेकर के आता रहूंगा, सुबह कुछ और खूबसूरत से।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

देखिए दोस्तों, जहाँ एक से बढ़कर एक रोमांटिक गाने आपको सुना रहा हूँ, तो वहीं क्यों ना बात हो जाए आज फिल्मी फ्लेवर के पिटारे में कुछ बेहतरीन रोमांटिक गानों के बारे में, जो गाने लोगों के दिलों को छू गए। सबसे पहले बात करता हूँ एक बोनस ट्रैक के बारे में, छलिया, जो कि जवान का एक बहुत बेहतरीन गाना अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने इस गाने को आवाज दी थी, और इस ट्रैक में प्यार का अलग ही जादू। अगर क्लासी रोमांस और विजुअल अपील की बात की जाए, तो इस गाने ने इस बात को खूब बढ़िया तरीके से सबके सामने ला करके खड़ा कर दिया। तो वही बात करते हैं इस साल की एक बेहतरीन कहानी सैयारा के बारे में, सैयारा का गाना धुन। धुन गाने की बात की जाए, जहां से कहानी को मोहित सूरी लेकर गया, और मोहित सूरी के सैयारा के ट्रैक धुन ने रिलीज होते सार ही सबके दिलों में जगह बनाई और ट्रेंडिंग हो गए। अहान पांडे और अनीप बड्डा की स्क्रीन केमिस्ट्री और मिथुन के सोलफुल अरेंजमेंट ने ये गाना प्योर ऑडियंस के बीच आइकॉनिक बना दिया। महेश बाबू ने इस फिल्म को डिजर्विंग ऑफ लव बताया था, यानी कि गाने को सिर्फ फैंस ने ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के स्टार्स ने भी खूब पसंद किया। वही बात करते हैं सितारे जमीन पर का गाना सर आंखों पे मेरे, आमिर और जेनेलिया देशमुख के लिए बनाया गया एक जेंटल रोमांटिक ट्रैक, इमोशनली एंगेजिंग था और शंकर एहसान लॉय का कंपोजिशन। वहीं अरिजीत सिंह शेवरी पारुलकर की वोकल्स ने इस गाने को और ज्यादा हार्ट टचिंग बना दिया। वहीं मैं एक गाने का नाम और लेना चाहूंगा, छावा कहानी का गाना जाने दो। एआर रहमान और अरिजीत सिंह की कोलैबोरेशन छावा फिल्म का डेब्यू सिंगल, यानी कि जाने तो एक सोलफुल लव गाना रहा, जिसके काफी ज्यादा प्रेज मिला फैंस के थ्रू और इंडस्ट्री के स्टार्स के थ्रू भी। विकी कौशल, रश्मिका मंदाना की रोमांटिक केमिस्ट्री इस गाने में पूरी तरह से दिखाई गई एक बहुत ही प्योरिटी भरे अंदाज में। वही दोस्तों, ऐसी इंडस्ट्री से और भी चर्चा लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: क्या आपको पता है कि फेसबुक पे आपके रिलेटिव से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक ही चीज है और वो है हैकर्स। तो उनसे प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ मेजर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड की। लेट मी गेस, आपका पासवर्ड क्या ही होगा? पासवर्ड 123 या फिर 12345? अरे भाई, तुम्हारा पासवर्ड इतना वीक है कि मेरी नानी भी गेस कर ले। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड ऐसा बनाओ जैसे अपने क्रश को प्रपोजल लेटर लिख रहे हो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल। याद रखो दोस्तों, सेफ रहो, स्मार्ट बनो और फेसबुक पे बॉस रहो।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक। हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी खूबसूरत गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फेवर में फिल्म डाउन आज ही मार्क या रेडियो महारानी के प्लेटफॉर्म पे हमेशा कुछ हटके किस्से कहानी आप सबके लिए बॉलीवुड के पिटारे से लेकर के आता हूँ। तो यहाँ ऐसी ही कुछ हटके कहानी आप सबके लिए लेकर के आया बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो कहानियाँ जो कि सभी कहानियों के जोनर से कुछ अलग रही और कुछ हटके रही और लोगों ने खूब सारा प्यार भी दिया इन कहानियों को। सबसे पहले बात करता हूँ लगान 2001 में रिलीज की गई स्पोर्ट्स पीरियड ड्रामा कहानी जहाँ पे एक तो स्टार्स की इतनी लंबी लाइन थी यानी कि कास्ट में 1, 2, 3, 4 नहीं ना जाने कितने ही सारे चेहरे थे आप सभी जानते हैं। फिर बात करते हैं रणवीर बसंत की एक यूथ को जगाने की ऐसी कहानी जहाँ की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी दिखाया गया जिसको 2006 में रिलीज किया गया था। इस कहानी ने भी यंगस्टर को बहुत ज्यादा प्रेरित किया था। और फिर बात करते हैं रॉक ऑन के बारे में जिसको 2008 में रिलीज किया गया इंडिया की पहली मेन स्ट्रीम रॉक बैंड फिल्म। ऐसी कहानी जो कि म्यूजिक से जुड़ी हुई थी और वो भी म्यूजिक की बात की जाए साथ ही साथ म्यूजिकल बैंड से जुड़ी जो उनको एक अलग ही पहचान देती नजर आई। आगे मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे तुम्बाड़ के बारे में एक डार्क फैंटेसी हॉरर कहानी जो कि इंडियन माइथोलॉजी से जुड़ी हुई थी। इस कहानी को जब रिलीज किया गया अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा प्यार बटोरती नजर आई। और इसी कड़ी में एक और कहानी शामिल है 12th Fail 2023 में रिलीज किया गया था। रियलिस्टिक स्टोरी थी यहाँ पे जहाँ पे विक्रांत मैसी के किरदार को पसंद किया गया और दिखाया गया कितना ज्यादा स्ट्रगल रहा लेकिन वो स्ट्रगल से लड़ते हुए जब आगे हम निकल रहे हैं तो पूरी दुनिया जान जाती है और अपने मुकाम पर हम पहुंच ही जाते हैं। इस कहानी ने यही सबको सिखाया। और भी बहुत सी कहानियां हम बात करें यहाँ पे क्वीन के बारे में 2014 में रिलीज किया था सोलो फीमेल ट्रेवल कहानी जो कि अपने आप को डिस्कवर करती नजर आई वो क्वीन। और आर्टिकल 15 तुम्बाड़ रणदेव बसंती जैसी कहानियों ने भी सबको कुछ सिखाया और कुछ अलग अंदाज सिल्वर स्क्रीन पर लेकर के आई ये कहानियां। ऐसी बॉलीवुड के गलियार से बहुत चर्चाएं और भी लेकर के आऊंगा आप सबके लिए। उससे पहले कुछ और खूब चर्चे गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

भाई बहनों के लिए एक विशेष सूचना। भारत सरकार लाई है ग्रामीण रोजगार की नई गारंटी, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। अब हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिन

इसी खूबसूरत गाने के साथ फिर से लौट आया हूँ लगन के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं बॉलीवुड जेम्स की, बात जो इंग्लिश स्टोरीज या फिर नॉवल से अडेप्ट की गई लिटरेचर और सिनेमा का बेहतरीन मेल से कुछ क्लासिक मास्टरपीस का होने वाला है जिक्र। ऐसी बॉलीवुड की कुछ कहानियां, सबसे पहले बात करता हूँ थिएटर्स। चेतन भगत की इंग्लिश बेस्ट सेलर नॉवल 5 Points Some Worth पर बना आइकॉनिक यूथ ड्रामा, जिसमें आमिर आर माधवन शर्मन जोशी ने स्टूडेंट लाइफ को नई पहचान दी। आगे बात करते हैं गाइड। आर के नारायण की इंग्लिश नॉवल द गाइड पे बेस्ड है ये कहानी। ये देवन और वहीदा रहमान की अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस के साथ इंडियन सिनेमा की लिटरेचर एडेप्टेड मास्टरपीस है। वहीं यहाँ एक कहानी का नाम और लेना चाहूंगा, आंखों की गुस्ताखियां। इस मेंशन के थ्रू फिल्म और लिटरेरी कनेक्शन दिखता है कि बॉलीवुड कैसा क्रिएटिव वर्ल्ड को क्रॉसओवर करता है। और ये बेहतरीन कहानियां जब सिल्वर स्क्रीन पर उतरी ये कहानियां, तो उनको अच्छा खासा प्यार मिलते नजर आया, कहानी हो चाहे किरदार। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

और अब फिल्मी फ्लेवर पर आरजे मौनी के साथ कुछ ऐसी फिल्मी सफल कहानियों के बारे में बात करेंगे जो दिखाती है कि टैलेंट और हार्ड वर्क से सपने सच हो सकते हैं बिना किसी फिल्मी परिवार के बैकग्राउंड के भी। ये स्टार्स अपनी डेब्यू फिल्म से ही स्पॉटलाइट में आ गए और ऑडियंस के फेवरेट भी बन गए। जहां मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले साल की बहुत बढ़िया कहानी सैयारा के बारे में, अनित पंडा। सैयारा की फ्रेश लीड अनित पंडा की जर्नी, जिसने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आकर लीड हीरोइन के रूप में इंडस्ट्री में एंट्री की और अपनी पहली फिल्म की पॉपुलैरिटी से यूथ आइकन बन गई। फिर बात करते हैं कृति सैनन। पहली फिल्म हीरोपंती से कृति ने इंडस्ट्री में धमाका किया। नो फिल्मी फैमिली, जस्ट मॉडलिंग और ऑडियंस के दम पर सुपरहिट साबित हुई। दीपिका पादुकोण भी इसमें शामिल है। ओम शांति ओम के साथ दीपिका ने एसआरके के अपोजिट डेब्यू किया और ओवरनाइट स्टार बन गई। अपनी डांस लुक्स और परफॉर्मेंस से पूरा इंडस्ट्री इंप्रेस कर दिया। एक नाम यहाँ पे और लेना चाहूंगा, दिशा पाटनी का, जहाँ एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में पहली बार अपने लुक्स और अपनी एक्टिंग के जरिए ऑडियंस की फेवरेट बनती नजर आई। अपना अलग स्टाइल, इनोसेंस और स्क्रीन प्रेजेंस के साथ सोशल मीडिया सबके दिलों पर और सिल्वर स्क्रीन पर छाती नजर आई और इन सभी स्टार्स ने डेब्यू कहानी से ही एक ऐसी पकड़ बनाई कि इंडस्ट्री में बढ़िया बढ़िया किरदारों के साथ फिर छा गई। बाकी ऐसी और चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले कुछ और खूबसूरत से कहूँगा।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गाना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेम। अब बात करते हैं उन कहानियों के बारे में जहां वर्किंग वुमेन्स की कहानियों के जरिए उनका स्ट्रगल, सक्सेस और ड्रीम्स को हाईलाइट करती नजर आती हैं कुछ ऐसी ही सिल्वर स्क्रीन की कहानियां और उनके किरदार। सबसे पहले बात करता हूं तुम्हारी सुलू के बारे में। विदा बैलेंस चारा ये फिल्म एक हाउसवाइफ से रेडियो जॉकी बनने की इमोशनल रिलेटेबल स्टोरी है जो हर ऑर्डिनरी वुमन के अंदर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस को सेलिब्रेट करती है। फिर बात करते हैं नाम शबाना। तापसी बनो की पावर पैक परफॉर्मेंस को नेशनल व्यूअरशिप में एक वर्किंग वुमेन स्पाई के चैलेंजेस और करीज को दिखाकर इस कहानी ने धमाल मचाया। बात कर ले इसके बाद मर्दानी के बारे में। रानी मुखर्जी का स्ट्रॉन्ग कॉप अवतार जो वुमेन सेफ्टी और ड्यूटी के रियल लाइफ इंपैक्ट को शोकेस करता है, ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के दिल जीत लेता है ये ऐसा किरदार। फिर बात करते हैं कहानी। विद्या बालन फिर से इस बार सिंगल वर्किंग लेडी का सस्पेंस फिल्ड रोल और अर्बन जंगल में अपनी स्ट्रेंथ से मुश्किलों का सामना करती नजर आई। वही बात करूंगा तापसी पन्नू के बारे में भी जिनकी एक बहुत बेहतरीन कहानी थप्पड़। इस फिल्म में एक ऐसी प्रोफेशनल वुमन है जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी के लिए खड़ी होती है, काम, घर और समाज तीनों पर पावरफुल सोच छोड़ती है। और इन कहानियों ने इतनी बेहतरीन स्टोरी को सबके सामने लाया कि लोगों ने सैल्यूट किया इन कहानियों को, इन किरदारों को और कितने बढ़िया तरीके से वो सिल्वर स्क्रीन पर फिल्माया गया, बहुत बढ़िया। ऐसी कहानियां जो लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करती हैं और अपने किरदारों के जरिए, अपने एक मोटिवेशनल मैसेज के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर छा जाती हैं। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं करता हूँ बॉलीवुड के बेटा से, लेकिन उस वाली कुछ और खूबसूरत सी कहानी।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशा है। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: छूकर मेरे मन को किया तूने ललनाना।
5: तुम मेरी कितनी भी तारीफ कर लो पर पकौड़े नहीं बनेंगे, क्योंकि बेसन नहीं है घर में और इतनी बारिश में तुम तो स्टोर जाने से रहे।
6: अरे बाबा तुम नाराज क्यों होती हो, तुम बस सामान की लिस्ट बनाओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो।
7: ड्राई फ्रूट से लेके दालों तक, कॉस्मेटिक से लेके मसालों तक, सब कुछ मिलेगा एक ही स्टोर पे, वो भी रीजनेबल प्राइसेस में।
8: स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंटल स्टोर नियर विमेंस कॉलेज NIT5 फरीदाबाद 121001।

बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। मैं फिल्मी टॉनिक आरजे मॉनिक। चर्चा करते हैं सिनेमा की उन कहानियों की जो कि सिर्फ कहानी नहीं कल्चर और डाइवर्सिटी का भी सेलिब्रेशन है। जहाँ इस साल की एक बढ़िया कहानी सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की परम सुंदरी रिलीज हुई और नॉर्थ और साउथ इंडिया की ट्रेडिशंस का जबरदस्त मेल दिखाते नजर आई। ऐसी बात की जाए इससे पहले कुछ और कहानियां जो कि नॉर्थ साउथ कल्चर ब्लेंड दिखाने वाली टॉप बॉलीवुड फिल्मों में गिनी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं टू स्टेट्स के बारे में। अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट स्टार चेतन भगत की नॉवल पर बेस्ड, जिसने पंजाबी और तमिल कल्चर के कॉन्ट्रास्ट को प्यार और फैमिली एक्सेप्टेंस की कहानी के थ्रू दिखाया गया। आगे बात की जाए चेन्नई एक्सप्रेस ऐसा क्या और दीपिका पादुकोण का मास एंटरटेनर, जिसमें मुंबई का नॉर्थ इंडियन फ्लेवर मीट्स साउथ इंडिया का ट्रेडिशन, मस्ती और एक्शन से भरपूर ये कहानी जिसको अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आया। और वहीं परम सुंदरी तो इस साल रिलीज हुई ही, जहां पे नॉर्थ साउथ वेडिंग म्यूजिक फैशन और जिंदगी की कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री वाइब्स सबको स्क्रीन पर मिली और खूब इन कहानियों को प्यार मिला। बॉलीवुड में टाइम टाइम पर कभी वेडिंग सेटअप्स, कभी फैमिली डायनामिक्स और कभी कॉमेडी के जरिए रीजनल यूनिटी और कल्चर मिक्स को हाईलाइट किया गया, जिसको लोगों ने पसंद भी किया और वो कहानियां हमेशा चर्चा में भी बनी रही। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले कुछ और खूबसूरत से गाने।

0: 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का। 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

कुछ कहानियां किरदारों से तो कुछ गानों से चर्चाओं में बनी रहती हैं, और अब मैं बात करने वाला हूँ ऐसी कुछ कहानियों की जो कि अपने गानों से ज्यादा चर्चा में बनी रही आज फिल्मी पिटारे में। सबसे पहले फिल्मी पिटारे में बात करते हैं आशिकी के बारे में। राहुल रॉय और अनु अग्रवाल स्टार है ये फिल्म अपने मेलोडियस एल्बम और नदीम के म्यूजिक के लिए क्लासिक बनी। धीरे धीरे से और नजर के सामने से ट्रैक्स हर दिल पर राज करते हैं। इसके बाद नंबर आता है रॉकस्टार का, जिसको 2011 में रिलीज किया गया। रणबीर कपूर की म्यूजिकल जर्नी को एआर रहमान के मैजिक और मोहित चौहान की आवाज ने पॉप कल्चर का एंथम बना दिया। नादान परिंदे और कुन फाया कुन तुम हो जैसे गानों ने इतना ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ करके रखा कि आज तक ये गाने लोग सुनना पसंद करते हैं। इसके बाद बारी आती है दिल से कहानी की। मणि रत्नम की इस फिल्म के एआर रहमान के फ्यूजन ट्रैक्स सतरंगी रे हर म्यूजिक लवर का सुरूर है। और इसके बाद बात करते हैं रहना है तेरे दिल में, 2001 की कहानी, जहां पे लव स्टोरी जितनी पॉपुलर थी उससे कहीं ज्यादा उसका पेपी और रोमांटिक म्यूजिक। जरा जरा और सच कह रहा है दीवाना रुला भी देता है और झुमा भी देता है, जहां इस फिल्म के गानों ने लोगों को इतना ज्यादा इम्प्रेस किया ना कि ये गाने इतने इमोशनल हैं कि हर आशिक हर लवर इन गानों को सुनना पसंद करता है। और भी कई ऐसी फिल्में हैं जहां DDLJ कबीर सिंह आशिकी 2 जैसे गाने भी कल्चरल मोमेंट्स बन चुके हैं। वहीं इस साल रिलीज हुई सैयारा का गाना तो ऐसा टाइटल ट्रैक उसका जिसने हर किसी को दीवाना बना दिया। सॉन्ग ही तो है जो फिल्मों को अमर बनाते हैं। आप लोग बताइए कि आपकी ऐसी कौन सी फिल्म है जिसका हर गाना ऑल टाइम आपका फेवरेट रहा। अपनी म्यूजिकल पिक बताइएगा जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले कुछ और खूबसूरत सिखाएंगे।

0: मजदूर भाई बहनों के लिए एक विशेष सूचना। भारत सरकार लाई है ग्रामीण रोजगार की नई गारंटी, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। अब हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के रोजगार की गारंटी।
1: विकसित भारत जी राम जी रोजगार की नई गारंटी।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

0: केवाईसी अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

हमने आज बात करी डेब्यू स्टार्स की, कि अपनी डेब्यू कहानी से ही कुछ फ्रेश चेहरों ने धमाल मचा दी। अब बात करते हैं बॉलीवुड के स्टार्स जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया और वो डेब्यू भी धमाकेदार रहा। जहां सबसे पहले बात करते हैं नोटेबल बॉलीवुड एक्टर्स विद साउथ डेब्यू। इमरान हाशमी, इमरान अपनी फिल्म ओदी से फिर से एक नए ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए तैयार हुए और इनकी इन फर्स्ट लुक को ही लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसके बाद बात की जाती है जानवी कपूर के बारे में। जानवी ने भी साउथ हीरो तेजस्वी प्रकाश के अपोजिट देवरा फिल्म में अपना डेब्यू ऐसा मार्क किया कि वो नोटेबल किरदारों में दर्ज हो गया। वहीं एक और बहुत बढ़िया एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने महेश बाबू के साथ किरदार निभाया और साउथ इंडस्ट्री में अपनी पहचान ऐसी बनाई कि बहुत सारे किरदारों के ऑफर्स भी मिलने लगे। ऐसी कुछ और स्टार्स भी हैं जहां काजल अग्रवाल, तमन्ना भाटिया, प्रभात जैसे एक्टर्स ने भी अपना क्रॉस ओवर बनाकर दोनों इंडस्ट्री में एक सक्सेस स्टोरी बनाई और जिस सक्सेस स्टोरी को, उनके किरदारों को, उनकी फिल्मों को ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड एक अलग ही पहचान मिली। और ये क्रॉसओवर इंडस्ट्री में जहां किरदार निभाए जाने कभी साउथ इंडस्ट्री के स्टार्स बॉलीवुड में, तो कभी बॉलीवुड के साउथ इंडस्ट्री में किरदार निभाते नजर आते हैं, तो ये पैन इंडिया स्टार फिल्म्स लोगों को और ज्यादा एंटरटेन करती नजर आती है। बाकी इसे और भी चर्चा करूंगा, उससे पहले कुछ और खूबसूरत से बातें।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: Wheels of Life, Wheels of Hope, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

हाँ जी, लौट आया हूँ जी एक बार फिर से लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। मैं आप सबका फिल्मी डॉनिक आरजे मौनिक, जहाँ इंडस्ट्री से, सिल्वर स्क्रीन से, तो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म से आज हमने बहुत सी चर्चाएं करी नए स्टार्स की, तो कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो कि 90s से लेके आज तक जिनके गाने हमारे दिलों पर राज करते नजर आए हैं, और कुछ ऐसी कहानियां जहाँ कहानियों से ज्यादा किरदारों ने ऐसी छाप छोड़ी कि उस किरदार के नाम से ही कहानी को आज पहचाना जाता है। बाकी ऐसे ही और भी चर्चाएं करता रहूंगा फिल्मी पिटारे से, कुछ आने वाली नई कहानियों के बारे में, तो कुछ आने वाली नई फ्रेश जोड़ियों के बारे में जो सिल्वर स्क्रीन पर दिखेंगी, और तो कहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी, और कुछ ऐसी ही नई पैन इंडिया स्टार कहानियों के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो कि बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होते नजर आने वाली है। यानी कि बॉलीवुड के और किस्से कहानियां बताने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त हो चला है यहां से जाने का। आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम जगह, मोड़ेरो बात, तब तक सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां वहां से शुरू होती है जहां लोग सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और मैं हूं गौरव आपके साथ। मेरे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद है साक्षी, जो कि आगे की कहानी आप सभी को बताएगी। तो माइक ओवर टू साक्षी।
1: उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की शांत जिंदगी, सुबह का काम, घर की जिम्मेदारियाँ और एक रूटीन जो कभी बदलता नहीं। इसी रूटीन का हिस्सा थी दो दादियाँ, चंद्रो और प्रकाशी। उनकी दुनिया सिंपल थी। सालों तक उन्होंने अपनी जिंदगी परिवार के लिए जी थी। सपने धीरे धीरे पीछे छूट गए, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक स्पार्क अभी भी जिंदा था, बस उसे जगाने का इंतजार था। एक दिन एक छोटी सी आउटिंग ने सब कुछ बदल दिया। वो अपनी पोती के साथ शूटिंग रेंज गई सिर्फ देखने के लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया, और वहीं से शुरू हुई एक कहानी। जो सिर्फ उनकी नहीं पूरे देश की बनने वाली थी।
0: और कैसे चंद्र और प्रकाशी दादी बनी शूटर दादी, करेंगे इसके बारे में और भी बात। आप सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। मैं हूँ गौरव आपके साथ और मेरे साथ स्टूडियो में साक्षी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कभी कभी एक ही पल ऐसा होता है जो पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं गौरव आपके साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं शूटर दादी की।
1: शूटिंग रेंज पर खड़ी वो दोनों दादियां, सब कुछ उनके लिए नया था, बंदूक, टारगेट, टेक्निक। फिर भी उन्होंने ट्राई करने का फैसला लिया। पहली बार जब बंदूक हाथ में आई, डर भी था, हेजिटेशन भी, लेकिन जैसे ही फोकस टारगेट पर गया, दुनिया चुप हो गई। और फिर पहला शॉट, वो निशाना सिर्फ टारगेट पर नहीं लगा था, वो उनकी जिंदगी के नए चैप्टर पर लगा था। उस एक पल ने उन्हें यह एहसास दिला दिया, कि उनके अंदर एक टैलेंट है जो कभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। अब उनके पास एक नया रीजन था, उठने का, जीने का और सीखने का। और यही से शुरू हुआ उनका असली सफर।
0: और कैसे उन्होंने सब संघर्ष को पार किया और साथ ही साथ कैसे उन्होंने समाज से भी परे होकर अपने टैलेंट को परखा, करेंगे इसके बारे में और भी बात। मगर तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान।
2: हो गया

0: नौकरानियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।
1: कुछ हटके हैं।

0: जब आप कुछ अलग करते हो तो दुनिया पहले समझती नहीं, सिर्फ और सिर्फ जज करती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं शूटर दादियों की।
1: गाँव में बातें होने लगी, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस उम्र में शूटिंग क्यों। हंसी, ताने, सवाल सब उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। रोज सुबह जल्दी उठना, घर का काम संभालना और फिर प्रैक्टिस के लिए जाना, ये उनकी नई रूटीन बन गई। ना प्रॉपर फैसिलिटीज, ना स्पेशल ट्रेनिंग, सिर्फ लगन और डिसिप्लिन। धीरे धीरे उनका एम इम्प्रूव होने लगा। जहाँ पहले डर था, अब वहाँ कॉन्फिडेंस आ गया। हर दिन के साथ एक चीज और स्ट्रांग होती गई, उनका बिलीव। और ये बिलीव ही उन्हें आगे ले जाने वाला था।
0: और कैसे उन्होंने अपने बिलीव के साथ जीते मेडल्स, करेंगे इसके बारे में और भी बात। तब तक के लिए सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। मैं हूँ गौरव आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है साक्षी।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।

0: कभी कभी जीत सिर्फ ट्रॉफी तक सीमित नहीं रहती, वो एक सोच को बदल देती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं शूटर दादी की।
1: कॉम्पिटिशन्स शुरू हुए छोटे लेवल से लेकर बड़े प्लेटफॉर्म तक, दादियाँ हर जगह खड़ी नजर आई। उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने जीतना शुरू कर दिया। मेडल्स आए, रिकॉग्निशन आई और धीरे धीरे उनका नाम हर जगह फैलने लगा। जो लोग पहले उन पर हंसते थे, अब वही लोग उन पर गर्व करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेडल्स नहीं था, सबसे बड़ा बदलाव था लोगों की सोच। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एज सिर्फ एक नंबर है और सपने किसी भी उम्र में देखे जा सकते हैं।
0: और कैसे उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को पार किया, करेंगे इसके बारे में आगे भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और मैं हूं गौरव आपके साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है साक्षी।

0: सारा शहर मुझे 89.6 FM रेडियो महारानी के नाम से जानता है।
1: अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन।
2: बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो प्रेरणा बनकर जिंदा रहती हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड आज हम बात कर रहे हैं कामयाबी की उड़ान में शूटर दादियों की।
1: शूटर दादियों का सफर उनकी पर्सनल सक्सेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस हर इंसान की जो कभी लेट फील करता है स्टार्ट करने के लिए। आज उनकी वजह से कई लड़कियां और महिलाएं अपने सपने फॉलो करने की हिम्मत कर रही हैं। उन्होंने ये सिखाया कि जिंदगी का कोई राइट टाइम नहीं होता, जो टाइम है वही सही है। उनकी कहानी हवा की तरह फैल चुकी है हर उस जगह तक जहां किसी को बस एक पुश चाहिए। और शायद इसीलिए शूटर दादियां सिर्फ नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक हिम्मत है और एक याद दिलाने वाली आवाज है कि शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती।
0: तो ये थी कहानी शूटर दादियां चंद्रो और प्रकाशी की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 9654896896। और अभी फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना। मिलते हैं आप सभी से सोमवार की शाम, मिलते हैं आप सभी से फिर से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: Wheels of Life, Wheels of Hope, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।
0: सड़क पे चलते समय सबसे पहले सुरक्षा के बारे में सोचें। आपका कहीं जल्दी पहुंचने से ज्यादा जरूरी है आपका घर सही सलामत पहुंचना। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।
3: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
2: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
4: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
5: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है। तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

इसी गाने के साथ स्टूडियो में मैंने दस्तक दे दी है। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ मैं सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं सुनाती हूँ बल्कि डिकोड करती हूँ विजन, रिस्क और मैडनेस को। और आज की स्टोरी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये स्टोरी है बिलीव की, ये स्टोरी है उन दो यंग लोगों की जिन्हें लोगों ने बोला इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग इम्पॉसिबल। और आज हम जिस प्लेटफॉर्म से फोन, कपड़े, फ्रिज, मेकअप, बुक सब ऑर्डर करते हैं, कभी वो सिर्फ एक छोटा सा आइडिया था। सोचो 2007 का इंडिया, न लोग ऑनलाइन पेमेंट पर ट्रस्ट करते थे, न लोग कार्ड डिटेल्स देना चाहते थे, न डिलीवरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, फिर भी किसी ने डिसाइड किया इंडिया रेडी है, बस किसी को पहला स्टेप लेना होगा। इन्होंने जॉब छोड़ी, इन्होंने सैलरी छोड़ी, इन्होंने कंफर्ट जोन छोड़ा और एक छोटे से ऑफिस में एक वेबसाइट बनानी शुरू कर दी। आज वो कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स रेवोल्यूशन का नाम है। लेकिन कौन थे वो दो लोग, कहाँ से आए थे और कैसे इन्होंने जीरो ट्रस्ट वाले मार्केट में बिलियन डॉलर ट्रस्ट क्रिएट किया, नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी। पहले गाना सुनते हैं, गाने के बाद मैं फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही थी 2007 के इंडिया के बारे में, जहां दो यंग लोगों ने डिसाइड किया कि इंडिया ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, चाहे लोग हंसे, मना करें या ट्रस्ट ना करें। और अब वक्त है नाम को रिवील करने का। वो दो लोग थे सचिन बंसल और विनी बंसल, और जिस कंपनी की बात मैं कर रही हूँ वो है फ्लिपकार्ट। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी, आज हम फ्लिपकार्ट को देखते हैं, फ्लैशी एड्स, बिग बिलियन डे, करोड़ के डील्स, बट रिमाइंड टू 2007, नो हाइप, नो फंडिंग राउंड्स, नो मीडिया स्पॉटलाइट, बस एक छोटा सा ऑफिस, दो लैपटॉप्स और एक ड्रीम। एट दैट टाइम इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी। लोग बोलते थे ऑनलाइन पैसा देना, आर यू सीरियस? और सच कहूँ लोग गलत भी नहीं थे। डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था, इंटरनेट स्लो था और ट्रस्ट जीरो था, बट विजन क्लियर था। सचिन और बिनी ने डिसाइड किया, लेट्स स्टार्ट स्मॉल, लेट्स स्टार्ट स्मार्ट। इसीलिए इन्होंने शुरुआत की बुक्स से। व्हाई बुक्स? बिकॉज बुक्स आर प्रिडिक्टेबल, नो साइज इश्यूज, नो फिटिंग इश्यूज, नो रिटर्न ड्रामा, स्मार्ट थिंकिंग, राइट? इन्होंने वेबसाइट बनाई, कोडिंग की, लिस्टिंग डाली और फिर वेट किया फर्स्ट ऑर्डर का। इमेजिन दैट मोमेंट, स्क्रीन के सामने बैठकर रिफ्रेश करना, कोई ऑर्डर आए तो नोटिफिकेशन आए, और जब फर्स्ट ऑर्डर आया तो वो फीलिंग क्या रही होगी? एक्साइटमेंट, फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर रियलिटी हिट। ऑर्डर आ रहे थे बट बहुत स्लो, कभी दिन भर एक भी ऑर्डर नहीं। और तब क्या करते थे फाउंडर्स? They did everything themselves. Customer care, Sachin. Packaging, Vinny. Delivery, sometimes they themselves. Yes, founders delivering books. ये ग्लैमरस स्टार्टअप स्टोरी नहीं थी, दिस वॉज ग्राउंड लेवल हसल। अब यहाँ पर मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी, एक कस्टमर ने बुक ऑर्डर की, गलती से वो बुक किसी और को डिलीवर हो गई, कंप्लेन आई। ये मोमेंट बिजनेस को तोड़ भी सकता था, बट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग इन्होंने कहा सिस्टम इम्प्रूव करना पड़ेगा, दैट्स लीडरशिप। मिस्टेक को इग्नोर नहीं, अपग्रेड में कन्वर्ट करना। इन्होंने टेक इम्प्रूव किया, ऑर्डर ट्रैकिंग बेटर बनाया, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, और स्लोली ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ। और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल अभी बाकी था, इंडिया के लोग कार्ड से पेमेंट नहीं करना चाहते थे। सोचो, अगर कस्टमर पे ही नहीं करेगा तो ऑनलाइन बिजनेस कैसे चलेगा? यहीं पर हुआ एक गेम चेंजिंग थॉट, लेकिन उस थॉट तक पहुंचने के लिए इन्होंने अपना कंफर्ट जोन भी तोड़ा, और वो डिसीजन इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। कैसे और क्या था वो मास्टर स्ट्रोक, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं एक स्टोरी को आज अनप्लग्ड कर रही हूँ। ये है फ्लिपकार्ट की स्टोरी। नाम तो रिवील हो गए हैं, सचिन बंसल और बिनी बंसल जो इस स्टोरी के मास्टरमाइंड्स हैं। बट किसी भी सक्सेस स्टोरी को समझने के लिए हमें उस बैकग्राउंड में उतरना पड़ता है, बिकॉज बिजनेसेस डोंट स्टार्ट इन ऑफिसेस, दे स्टार्ट इन माइंड्स। सचिन और बिनी दोनों टिपिकल फाइनेंशियल क्लास फैमिलीज से आए थे। डिसिप्लिन, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, रिस्क लेने का कल्चर नॉट रियल। मिडिल क्लास फैमिलीज में एक फॉर्मूला होता है, पढ़ो, अच्छी जॉब लो, सिक्योर फ्यूचर बनाओ, और इन्होंने वही किया। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, कॉर्पोरेट जॉब, स्टेबल सैलरी, एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। बट यही एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, कुछ लोग कम्फर्ट में भी अनकम्फर्टेबल होते हैं यार। इनसाइड देम एक कॉन्स्टेंट वॉइस होती है, देयर हैज टू बी समथिंग बिगर। कॉर्पोरेट लाइफ सेफ थी, बट सेफ लाइफ एक्साइटिंग नहीं थी। और फिर एक ऑब्जर्वेशन ने इनका डायरेक्शन चेंज कर दिया। वो देख रहे थे ग्लोबल ट्रेंड्स। यूएस में ऑनलाइन शॉपिंग ग्रो कर रही थी, लोग अमेजोन से बुक ऑर्डर कर रहे थे, और इंडिया पॉपुलेशन ह्यूज, यूथ रिस्किंग, इंटरनेट स्लोली स्प्रेड हो रहा था, पोटेंशियल मैसिव लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो। यहीं से थॉट आया, व्हाई नॉट बिल्ड इंडियाज ओन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। नाउ इमेजिन, आप घर जाकर फैमिली को बोलते हो, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, वेबसाइट बनाऊंगा। साइलेंस, कंसर्न, डाउट, टिपिकल रिएक्शन। बेटा रिस्क मत लो, बट एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी 100% क्लैरिटी के साथ स्टार्ट नहीं होता, इट स्टार्ट विद कन्विक्शन। इन्होंने जॉब छोड़ी, छोटा सा ऑफिस लिया, बेसिक फर्नीचर, लिमिटेड रिसोर्सेज, और शुरू हुई कोडिंग। वेबसाइट का नाम डिसाइड हुआ फ्लिपकार्ट। कोई फैंसी लॉन्च इवेंट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस एक लाइव वेबसाइट, और फिर वेटिंग। पहले कुछ वीक साइलेंस, ट्रैफिक लो, ऑर्डर्स रेयर, कभी कभी डाउट आता होगा, डिड वी मेक अ मिस्टेक, बट डिफरेंस यही था, इन्होंने क्विट नहीं किया, इंस्टेड दे एनालाइज्ड। इन्होंने देखा लोग बुक्स ऑनलाइन खरीदने में रिलेटिवली कंफर्टेबल हैं, इसीलिए फोकस सिर्फ बुक्स पर रखा गया। नीश कैटेगरी, कंट्रोल इन्वेंट्री, मैनेजेबल लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट स्टार्ट। लेकिन एक और रियलिटी थी, इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन लो था, लोग स्लो कनेक्शंस पर ब्राउज करते थे, वेबसाइट अगर हैवी हो जाए तो लोड नहीं होती थी। तो इन्होंने साइट सिंपल रखी, लाइट डिजाइन, इजी नेविगेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दी, बिकॉज इनको पता था इफ द फर्स्ट एक्सपीरियंस गोज रॉन्ग द कस्टमर नेवर कम्स बैक। और फिर एक दिन ऑर्डर वॉल्यूम थोड़ा स्टेडी होने लगा, कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ, बट साथ ही प्रेशर भी। हर ऑर्डर एक टेस्ट था, डिलीवरी लेट हुई तो ट्रस्ट गया, प्रोडक्ट गलत हुआ तो रेपुटेशन गया। और फिर वो एक इंसिडेंट जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बुक गलत कस्टमर को डिलीवर हो गई। अ स्मॉल मिस्टेक, बट इन स्टार्टअप स्मॉल मिस्टेक्स लुक बिग। कस्टमर एंग्री, कंप्लेन स्ट्रॉन्ग, और यहाँ फाउंडर पैनिक कर सकते थे, बट इसकी बजाय इन्होंने टीम मीटिंग बुलाई। इन्होंने बोला, इफ वी वांट टू स्केल वी नीड सिस्टम्स नॉट जुगाड़। ये टर्निंग माइंडसेट था, फ्रॉम सर्वाइवल टू स्केल थिंकिंग। लेकिन सबसे बड़ा बैरियर अभी भी खड़ा था, ऑनलाइन पेमेंट का फियर। लोग कार्ड डिटेल्स देने से डरते थे, फ्रॉड का डर, सिक्योरिटी का डर, और जब तक पेमेंट ट्रस्ट सॉल्व नहीं होता, ग्रोथ लिमिटेड रहने वाली थी। तो क्या इन्होंने वेट किया मार्केट मैच्योर होने का? नो, दे डिसाइडेड टू चेंज द मार्केट, और वो डिसीजन इंडिया ई कॉमर्स हिस्ट्री का गेम चेंजर बना। क्या था वो स्टेप, कैसे बना इनका बिगेस्ट एडवांटेज, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। गाना सुन लेते हैं, गाने के बाद मैं फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हे ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मनु दास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

वेलकम अगेन, मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड। और मैं बात कर रही हूं फ्लिपकार्ट के बारे में, जहां सचिन बंसल और बिनी बंसल वेबसाइट बना चुके थे, ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन ग्रोथ अभी भी लिमिटेड थी, बिकॉज इंडिया रेडी नहीं था। सबसे बड़ा बैरियर ट्रस्ट। लोग बोलते थे ऑनलाइन पैसे दिए और प्रोडक्ट नहीं आया तो, और यही आया वो डिसीजन जिसने इंडिया ई कॉमर्स का DNA चेंज कर दिया। कैश ऑन डिलीवरी, यस, सिंपल सा आइडिया बट रिवोल्यूशनरी। फ्लिपकार्ट ने बोला प्रोडक्ट घर आए तब पैसे दे देना। सडनली लोग कंफर्टेबल होने लगे, मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स में डिस्कशंस होने लगा, अच्छा पहले प्रोडक्ट देख लेंगे फिर पैसे देंगे। ऑर्डर स्पाइक होने लगे, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। COD का मतलब था लॉजिस्टिक स्ट्रांग होना चाहिए, डिलीवरी नेटवर्क रिलायबल होना चाहिए, रिटर्न्स हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और यहीं से स्टार्ट हुआ रियल स्ट्रगल फेज। टीम बिल्ड करनी थी। अब सिर्फ दो फाउंडर्स का काम नहीं था, डेवलपर्स हायर हुए, वेयरहाउस स्टाफ हायर हुआ, डिलीवरी पार्टनर्स ऑन बोर्ड हुए। कल्चर बिल्ड करना था, और कल्चर सिंपल था, कस्टमर फर्स्ट। हर कंप्लेंट सीरियसली ली जाती थी, हर डिले एनालाइज होता था, बिकॉज उनको पता था ट्रस्ट एक बार टूट गया तो मार्केट वापस नहीं आती। फिर आया एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट, बिग बिलियन डे। इंडिया में पहली बार किसी ऑनलाइन कंपनी ने इतना एग्रेसिव मेगा सेल अनाउंस किया। मार्केटिंग लाउड थी, ऑफर्स क्रेजी थे, एक्साइटमेंट हाई हुई, और जब सेल स्टार्ट हुई वेबसाइट पर लाखों लोग एक साथ, ट्रैफिक एक्सप्लोड, ऑर्डर्स फ्लड, और फिर वेबसाइट क्रैश। यस, सर्वर्स हैंडल नहीं कर पाए, क्रिटिसिज्म शुरू, सोशल मीडिया पर मीम्स, न्यूज हेडलाइंस नेगेटिव, कॉम्पिटिटर्स हंस रहे थे। ये वो मोमेंट था जहां एक कंपनी टूट भी सकती थी। बट हेयर्स द डिफरेंस बिटवीन एवरेज फाउंडर्स एंड विजनियर्स। इन्होंने हाइड नहीं किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, यस वी अंडर एस्टिमेट द डिमांड। और नेक्स्ट ईयर बेटर सर्विसेज, बेटर टेक टीम, बेटर प्लानिंग, बिग बिलियन डे वापस आया, और इस बार कंट्रोल्स क्योर्स, सेल्स सक्सेसफुल, और धीरे धीरे बिग बिलियन डे बन गया इंडिया का शॉपिंग फेस्टिवल। लोग वेट करते थे, विश लिस्ट बनाते थे, बजट सेव करते थे। फ्लिपकार्ट सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रहा, इट बिकम अ हैबिट। लेकिन एक और साइलेंट स्ट्रगल चल रहा था, फंडिंग। स्केल करने के लिए पैसा चाहिए, वेयर हाउस, टेक, मार्केटिंग सब कॉस्टली। इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना इजी नहीं था, क्वेश्चन सिंपल था, इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग कब प्रॉफिटेबल होगी। और यहाँ फाउंडर्स को प्रूव करना था कि ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, लॉन्ग टर्म शिफ्ट है। कैसे कन्विंस किया इन्वेस्टर्स को, कैसे कंपनी बिग बिलियन डॉलर वैल्यूएशन तक पहुंची, तो बताऊंगी आपको। लेकिन गाने के बाद, गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

बातें चलती रहेंगी। मैं फिर से हाजिर हूँ, शो है बिजनेस अनप्लग्ड। और आज बिजनेस अनप्लग्ड पर मैं सिर्फ एक कंपनी की ग्रोथ नहीं बल्कि एक माइंडसेट का एवोल्यूशन देख रही हूँ। एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ सफर आज एक मैसिव इकोसिस्टम बन चुका है। फ्लिपकार्ट सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, इट इज अ बिहेवियरल शिफ्ट। वेयर हाउसेज मल्टीपल सिटीज में, डिलीवरी नेटवर्क देश के कोने कोने तक, लैक्स ऑफ सेलर्स, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, टर्नओवर हजारों करोड़ तक पहुंच गया है, वैल्यूएशन बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गया है। और फिर वो हिस्टोरिक मोमेंट जब ग्लोबल रिटेल जायंट वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट दैट इंडियन स्टार्टअप्स आर नॉट एक्सपेरिमेंट्स एनीमोर, दे आर सीरियस ग्लोबल प्लेयर्स। लेकिन यहाँ एक ऑनेस्ट बात मैं बोलना चाहूंगी, जब आप हेडलाइंस देखते हो बिलियन डॉलर वैल्यूएशन, मैसिव सेल डे, तो आपको सिर्फ सक्सेस दिखती है, पर उन हेडलाइंस के पीछे क्या था? लेट नाइट, सर्वर क्रैशेस, एंग्री कस्टमर्स, कैश फ्लो स्ट्रेस, इन्वेस्टर्स के टफ क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ डाउट। हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में एक फेज आता है जब वो क्वाइटली सोचता होगा, एम आई डूइंग द राइट थिंग। डिफरेंस बस इतना होता है, कुछ लोग डाउट

गुड मॉर्निंग जी, आप लोगों ने वो लाइन सुनी है, जब जागो तब सवेरा। तो अगर मैं शाम को जाग रहा हूँ तो मेरे लिए शाम को मॉर्निंग हुई ना, ऐसा ही होता है ना शायद। स्वागत है आप सभी का, गुड इवनिंग फिर से बोल देता हूँ। स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो शाम हो ही चुकी है एंड मौसम भी सुहाना सा ही है, ठीक ठाक हो जाता है शाम तक आते आते। एंड अभी मैं अब अगले 3 घंटों के लिए आप सभी के साथ आ गया हूँ। खूब सारी बातें होने वाली है। तो देखो मेरा शो क्या है, सबसे वर्सटाइल शो है। इधर उधर की बातें, थोड़ी सी गॉसिप, थोड़ी बहुत सपनों की बातें कर लेंगे, तो थोड़ी बहुत फ्यूचर और पास्ट की बातें भी हो जाएगी ना मेरे दोस्त। और अगर आपके एरिया में कुछ भी गंदगी फैल रही है जिसकी आप शिकायत करना चाहते हैं, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो है MCF ऐप, आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हो। अगर वहाँ से भी कोई समाधान नहीं मिल रहा, आप हमारे थ्रू भी कंप्लेंट रेज करवा सकते हो। मतलब आप हमें कॉल कीजिए, हम भी इस बात को उजागर करेंगे। ऑल्दो हम लोगों को बस सिंपल से बताना है कि देखो यहाँ पर गंदगी हो रही है। और दूसरी चीज़, फरीदाबाद की पब्लिक तो वैसे भी स्मार्ट है, क्योंकि फरीदाबाद ही एक स्मार्ट सिटी है। तो देखो ये सारी तो बातें होगी, और अब होगी अगले 3 घंटे तक ढेरों

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हम सब लोग ना एक ऐसी लाइफ रेस में भाग रहे हैं जहां पर फिनिश लाइन का किसी को भी क्लियरली नहीं पता। डिग्री लो, जॉब लो, पैसा कमाओ, पर एक सवाल, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है क्या आप एक्चुअली में खुश हो? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। ये सवाल ना मेरे मन में एक्चुअली ऐसे आया कि बचपन में जो सोचा था क्या लाइफ वैसी निकली है, या फिर बड़े होने के बाद सबसे बड़ा स्कैम क्या हुआ है हमारे साथ? घर के रूल्स जो आज तक समझ नहीं आए, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे या फिर स्मार्ट थे, या फिर क्या हम अपने पेरेंट्स जैसे बन पा रहे हैं? आपने कभी सोचा, या फिर हम बन चुके हैं? आपने नोटिस किया हम इतना दूसरों के बारे में क्यों सोचते हैं? अक्सर होता है ना कि हम लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं और हम लोग ये भी बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और एक और चीज है, उसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। ये तो हमारा दुश्मन है या दोस्त है, ये तो समझ ही नहीं आता। और क्या लोग वैसे ही जज करते हैं जैसे हम लोग सोचते हैं? क्योंकि काफी बार हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। और इसके बाद आती है एक चीज जिसे कहते हैं पैसा, और हाँ, हैप्पीनेस। लोग कहते हैं पैसे से ही हैप्पीनेस मिलती है, पैसे से ही सारी खुशियां मिलती है, मगर नहीं, पैसे से सब खुशियां नहीं मिल सकती। मगर हाँ, अगर आप रोना ही चाहते हो तो लैम्बोर्गिनी के अंदर बैठ के रो ना, सड़क पर रोने से क्या फायदा। और साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं जो लोग अमीर होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। काफी बार लोगों के पास पैसा बहुत होता है मगर स्ट्रेस भी उतना ही ज्यादा होता है। काफी बार लोगों के पास पैसा नहीं होता मगर स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं होता, वो लोग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं। तो इस पे मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि रियल क्या चीज है, पैसा या फिर सोसाइटी या फिर हमारी जिंदगी? बताइएगा जरूर। नंबर है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके,
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।
2: ना, निवाना।

हम रोज रात को ना एक मूवी देखते हैं जिसके डायरेक्टर भी हम होते हैं, हीरो भी हम हैं, लेकिन सुबह उठते ही पूरी फिल्म डिलीट हो जाती है। सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ सपना था या हमारे दिमाग ने कुछ बताना चाहा था। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड बंडा आप सभी के साथ। आपको क्या लगता है सपने क्या होते हैं? देखो, साइंस के हिसाब से सपने कोई रैंडम मूवी नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक नाइट शिफ्ट है। तो दिन भर हम लोग जो भी देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, तो दिमाग उसको सॉर्ट करने लग जाता है। बेकार चीज़ें डिलीट, इंपॉर्टेंट मेमोरी सेव, और इमोशंस का भी प्रेशर होता है। कभी नोटिस किया आप लोगों ने, जैसे स्ट्रेस हो हमें तो अजीब अजीब से सपने आते हैं, और हम जब खुश होते हैं तो अच्छे सपने आते हैं। और हमारे दिमाग का एक क्रिएटिव प्लेग्राउंड है। देखो, नींद के दौरान ना हमारा एक REM स्लीप होता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस टाइम क्या होता है, लोगों को ना क्रेजी आइडियाज आते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा, गूगल का आइडिया लैरी पेज को आया था सपने पे, सपने में। हाँ, और इम्पॉसिबल सीन्स भी हमेशा सपने में नॉर्मल लगते हैं। सपना है तो मतलब नो रूल्स, नो लॉजिक जोन। और सिंपल से ये होता है, हमारा जो मेमोरी सिस्टम होता है ना, ये ऑफ हो जाता है। जहाँ पर हमारी मेमोरी स्टोर होती है वो सोते वक्त उतना एक्टिव नहीं होता, इसलिए सपने हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। और जागते ही क्या होता है, रियलिटी ओवरराइड कर देती है सब चीज़ों को। जैसे कि हमारा फ़ोन है, लोगों की आवाज़ें हैं, और रियल दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है, ये सब मिलके सपनों को ओवरराइड कर देती है। जैसे कि हमारा सिस्टम का रैम क्लियर हो गया हो, तो सपने कभी भी स्टेबल नहीं होते, कोई लॉजिक नहीं होता, सीन कहीं से भी कहीं चेंज हो जाता है, सब कुछ फास्ट होता है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरे सपने में आज तक सुबह ही नहीं हुई, मतलब हमेशा बादल छाए रहते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? नंबर मेरा 9654896896। अगर मैं किसी को सपने दिखा पाता तो शायद मैं यही गाना गाता। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आपने भी सुना होगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन का 10% हिस्सा यूज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि हम लोग 100% भी यूज करते हैं। सच में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो, हम ना अपने दिमाग का ऑलमोस्ट 100% यूज करते हैं, पर एक साथ कभी नहीं करते हैं। हम जब बात कर रहे होते हैं तो कुछ और एरियाज एक्टिव होते हैं, जब सोच रहे हैं तो दूसरे एरियाज एक्टिव होते हैं। दिमाग एक शहर की तरह है, हर एरिया का अपना काम है और टाइम आने पर सब काम करते हैं। देखो क्या हो गया, ऐसे गलत क्यों आई ये बातें, मतलब कि 10% ही दिमाग का इस्तेमाल करते हैं हम। कुछ मूवीज आई थी जैसे कि लूसी, वहां पर हीरोइन 100% ब्रेन यूज करके सुपर ह्यूमन बन जाती है, मगर रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो, लोगों ने अज्यूम कर लिया शायद ये पार्ट यूज ही नहीं होता, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि ब्रेन के कुछ ही पार्ट्स फंक्शन कर रहे हैं और कुछ पार्ट्स नहीं कर रहे हैं। और ब्रेन स्कैन और दिखाते हैं कि ऑलमोस्ट हर पार्ट का यूज होता है, पर अपने अपने टाइम पे। तो लोग कहते हैं हम सिर्फ 10% दिमाग यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। चलिए, अभी आप लोग भी अपने दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिए, अभी सिर्फ गाड़ी चलाने में ध्यान लगाइए और सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। बहारा सुनिए इस गाने को। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

सच सच बताना कि आपके घर में भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करते हैं सब लोग, मगर क्यों करते हैं ये किसी को नहीं पता। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। अब देखो, कुछ कुछ रूल्स होते हैं घरों में, जैसे कि फ्रिज बार बार मत खोलो। मम्मी डांटती है ना, बोलती है 5 मिनट बाद अंदर कुछ चेंज तो नहीं हो जाएगा, बार बार फ्रिज खोलते रहता है। और रिमोट को प्लास्टिक के कवर में ही रहने दो, मतलब यार यूज करना है या म्यूजियम में रखना है, मुझे ये समझ नहीं आता। और जैसे कुछ कुछ रिलेटेबल रूल्स है जो कि मुझे लगता है आप लोगों के घर में भी होंगे। रात में झाड़ू मत लगाओ वरना पैसे चले जाते हैं, और फिर उसके अलावा शाम के बाद नेल्स मत काटो, नाखून मत काटो।

ये तो सबके घर में ही होता है। और एक चीज जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि घर में मेहमान आए हैं सीधे बैठना, पीठ सीधी करके बैठना, वरना फैमिली की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा। और फोन पे मत रहो, फोन आग लग जाए तेरे फोन को। फिर उसके बाद मम्मी पापा लोग खुद ही 3-3 घंटे व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखते हैं, होता है कि नहीं? तो सबके घरों में ये चीज़ होती है। और आपके घर का सबसे वियर्ड रूल क्या है ये भी आप लोग हमें बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर रेडियो महारानी को ढूंढिए, वहीं पर मैसेज कर डालिए। और मुझे लगता है शायद ये रूल्स ना इलॉजिकल नहीं है, इमोशनल होते हैं, क्योंकि हर घर के कुछ ना कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं फैमिली के हिसाब से। तो आज घर जाके एक रूल जरूर नोटिस करना और सोचना कि ये रूल अजीब है या फिर इसके पीछे कुछ चीज छुपी हुई है। फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आयशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो तुम सारा होगा कोई।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

इमेजिन करो आपके पास एक मशीन है और वो कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं, वो है टाइम मशीन। सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो। पास्ट या फ्यूचर, कहाँ जाना चाहोगे? देखो, अगर आप लोग पास्ट गए तो वहाँ आप अपनी गलतियाँ ठीक कर सकते हो, किसी को एक बार और मिल सकते हो या एक डिसीजन चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पास्ट चेंज कर दिया तो क्या आप आज भी चेंज हो जाओगे या फिर आपका आज भी चेंज हो जाएगा क्या? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। टाइम मशीन के साथ पास्ट का तो मैंने बता दिया, मगर अगर आप फ्यूचर में जाते हो जहां आप देख सकते हो कि आप सक्सेसफुल हुए या नहीं, आपका सपना पूरा हुआ या नहीं, पर अगर फ्यूचर देख लिया तो फिर जीने का एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? देखो, पास्ट में जाके क्या चेंज करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि शायद टाइम ट्रेवल का बिगेस्ट रिस्क ये नहीं है कि आप लोग कहीं खो जाओगे, बल्कि ये है कि आप खुद की पहचान भुला सकते हो। और इसी के साथ साथ पास्ट में जाके आप किसी को वापस तो ला नहीं सकते, और फ्यूचर में जाके आप अपनी जर्नी स्किप तो कर नहीं सकते। तो सिंपल सा ये है कि देखो, अगर आप के पास चॉइस हो तो आप अपनी कहानी दोबारा लिखना चाहोगे या फिर पहले आप अपनी एंडिंग देखना चाहोगे? फोन उठाओ और बताओ फटाफट। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए एक गाना।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट वॉट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली, जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

0: एक सिंपल सा सवाल किया था कि अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप पास्ट में जाना चाहोगे या फिर फ्यूचर में, और अगर आप पहुंच जाओगे फ्यूचर में तो क्या चेंज करना चाहोगे, और अगर पास्ट में जाना चाहोगे तो आप क्या करोगे। ये सिंपल सा सवाल था जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ है एक कॉलर। हेलो, हु इज दिस?
1: मेरा नाम नैंसी है।
0: हाय नैंसी, तो आप कहाँ जाना चाहोगे, मतलब पास्ट में या फ्यूचर में?
1: फ्यूचर में।
0: क्यों?
1: क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, और पास्ट तो हो गया जो हो गया, तो फ्यूचर में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो जाके सही तो कर सकते हैं।
0: कैसे सही कर सकते हो? अब अगर एक बात मानो आपको फ्यूचर पता लग गया तो आप लोगों के लगता नहीं कि कोई जीने का मजा ही नहीं रह जाएगा? आपको पता यहाँ तक तो आना ही आना है।
1: वही तो मजा है, वही तो देखना है फ्यूचर में क्या क्या होता है।
0: और अगर नहीं पहुँच पाए उस जगह तक तो
1: फिर पता नहीं।
0: ओके तो थैंक यू सो मच नैंसी हमें फोन करने के लिए, एंड आप लोग भी इसी तरह से हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है हमारा 9654896896। अभी फिलहाल ये पास्ट और फ्यूचर वाला सवाल तो खत्म हो गया, मगर मेरा शो अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि गाने और बातें यूं ही चलती रहेंगी। तो अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूं। गाने का नाम है केसरिया तेरा इश्क है पिया। हाँ, मेरी आवाज में अच्छा नहीं लगेगा, मगर हाँ ओरिजिनल आवाज में सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र अरिजीत सिंह की आवाज में आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

आज घर जाके एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, अपने फोन को 10 मिनट के लिए साइड रख देना और सच सच बताना अपने आप को कि आपको शांति मिली या फिर एंग्जायटी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और ये मोबाइल ना, हमारी मम्मी सही कहती है, आग लगे तेरे मोबाइल को, क्योंकि हम लोगों की लाइफ ईजी तो कर दी है मगर हाँ साथ ही साथ दिक्कतें भी बढ़ा दी है। देखो मोबाइल ने ना लाइफ को रॉकेट बना दिया है, कैब चाहिए वो मिल जाएगी, फूड शॉपिंग दुनिया सब कुछ आपके पॉकेट में है, लेकिन क्या इसी पॉकेट में हम थोड़ा सा खुद को खो बैठे हैं? आपको क्या लगता है? देखो पहले लोग ना घर आके मिलते थे, अब ऑनलाइन आना ही मिलना हो गया है। डिनर टेबल पे सब साथ होते हैं पर बातें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के साथ होती है। टाइपिंग की स्पीड बढ़ गई है पर फीलिंग्स बोलने में हेजिटेशन भी बढ़ गई है। क्या आप लोग भी बिना फ़ोन के रह सकते हो? मतलब कितने घंटे रह सकते हो? ऑनेस्टली बताना, मतलब मुझे नहीं बता सकते कोई नहीं, अपने आप को ज़रूर बताना कि आप लोग बिना मोबाइल फ़ोन के कितने देर तक रह सकते हो। हो सकता है प्रॉब्लम फ़ोन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। देखो फ़ोन एक ब्रिज भी बन सकता है और एक दीवार भी। ब्रिज मतलब दो लोगों को जोड़ने का, दीवार हमेशा के लिए कॉन्वर्जेशन को रोकने का। और हम सीन तो हो रहे हैं पर क्या हम समझे भी जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज आप लोग भी डिसाइड करो कि फोन को यूज कर रहे हो या फिर फोन आपको यूज कर रहा है। और तब तक के लिए रेडियो महारानी पर इस गाने को सुनते जाइए, गिल्टी ये गाना इंद्र चाहल और किरण ओजला की आवाज में। सुनिए इस गाने को।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना तो मन भी है, मिले जे कोई चाहता है। बातुए में खुले होना, हवा भी चुल्ले होना, एक गल भुल्ले होना, मूसे वाला चाहता है, जान गया जाना है।

0: जाओ दलदानी माड़ा
1: काटे हुई से बीबने।
2: जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, सभी लोग करते थे। और एक सिंपल सा सवाल कि जब आप लोग छोटे थे तो क्या आपने सोचा था कि आप आज जहां हो यही होगे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। बचपन का सबका सपना होता है, तो जो बचपन का आपका सपना था क्या आप वो आज हो या फिर आज की रियलिटी डिफरेंट है क्योंकि लाइफ ने कहानी थोड़ी सी एडिट कर दी है। हो सकता है बिल्कुल। देखो बचपन में ना लाइफ कितनी सिंपल थी, रोना भी हमेशा लाउड था, हंसना भी लाउड था और सपने हमेशा से अनलिमिटेड थे। तब लगता था कि बड़े होके ना फ्री हो जाएंगे, बट आज फ्री टाइम कहाँ मिलता है, किसके पास है फ्री टाइम। और जब फ्री टाइम मिलता है तो फिर एनर्जी ही नहीं बचती, और उस टाइम तो होमवर्क से डर लगता था और आज बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लगता है। देखो एक बात है, बड़ी डीप है। तब हम लोग बोलते थे जल्दी जल्दी बड़े होना है, जल्दी जल्दी बड़े होना है, मगर अब बोलते हैं कि काश थोड़ा और बचपन मिल जाए, बस यही तो सोचते हैं। उस टाइम 10 रुपए में भी बहुत सारी खुशियां मिल जाती थी, और आज सैलरी आती है फिर भी बहुत कुछ मिसिंग लगता है ना। और तब दोस्ती प्योर होती थी, और आज कॉन्टैक्ट ज़्यादा हैं लेकिन कनेक्शन बहुत ज़्यादा कम है। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बदल गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमने वो चीज़ें छोड़ दी जो हमें खुश किया करती थी, ड्राइंग, डांसिंग, बिना किसी रीज़न के हंसना, और वो सब टाइम वेस्ट लगता है। तो इस पर आप लोग भी बताओ, आपके अंदर का वो छोटा बच्चा आज भी खुश है या फिर चुप हो गया है। नंबर है मेरा 9654896896। और अभी आपके अंदर के इंसान को खुश करने के लिए एक गाना सिद्धू मूसेवाला, आतिफ असलम, दिलजीत दोसांझ और राहत फतेह अली खां की आवाज में, मतलब AI कवर सॉन्ग। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे क्लास तो पीती जा, सुन।

डीप कोने मेरे कमरे में डंगा डंगा क्लीन एंड नीट कोने मैंने रात ने सुननी बीट दे मेरे तो लीड कोने आई एम जीओडी आना कदे मेरा पीक कोने स्प्लेंडर पे बैठ जगोरी मेरे तो जीप कोने।

एक बात ना सच सच बताना कि मान लो अगर कल सुबह आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या आप सच में खुश हो जाओगे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। ये गाना था टोटल, और टोटल में अगर 1 करोड़ रुपए आ जाए तो शायद ही इंसान खुश हो पाएगा। अब आप बोलोगे 1 करोड़ की तो कुछ वैल्यू नहीं रही है, अब 1 करोड़ में तो घर भी नहीं आता है। आता है, सब कुछ आता है। और काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि देखो कुछ दिन की खुशी रहेगी, फिर कुछ दिन बाद वही स्ट्रेस, वही ओवर थिंकिंग वापस आ जाएगी। एक तरफ लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ मिलता है, कंफर्ट मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं पैसे से सिर्फ चीज़ें मिलती है, सुकून कभी नहीं मिलता। स्कूल में हमेशा सोचते थे ना हम लोग कि पैसा होगा तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी, और अब शायद काफ़ी सारे लोगों के पास पैसा तो है मगर टेंशन डबल हो चुकी है, अपग्रेड हो चुकी है। तो देखो मिडिल क्लास का सपना होता है बस थोड़ा और कमा लूँ फिर लाइफ सेट है, पर थोड़ा और कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो इस पर आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से पैसा खुशियां लाता है या फिर सिर्फ प्रॉब्लम्स को अपग्रेड करता है, या फिर कोई ऐसा मोमेंट बताइए जब पैसे ने आपकी लाइफ को इजी बनाया हो। नंबर है मेरा 9654896896। देखो पैसा ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है और नहीं भी होता है, जैसे कि हॉस्पिटल के बिल का डर, घर का रेंट, बेसिक नीड का प्रेशर, लेकिन लव, पीस और रात की नींद ये EMI से नहीं मिलते मेरे दोस्त। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी की सारी टेंशन दूर करने के लिए ये वाला गाना, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

कहते हैं हमारे पैदा होने के साथ ही हमारी किस्मत लिख दी जाती है, हमारे मुकद्दर लिख दिया जाता है, डेस्टिनी लिख दी जाती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अच्छा सच सच बताना, क्या आपकी लाइफ एक ऑलरेडी रिटन हुई स्क्रिप्ट है या फिर आप खुद से अपनी हर दिन की एक स्क्रिप्ट खुद लिखते हो? क्योंकि अगर सब कुछ लिखा हुआ है ना तो फिर हमें रिग्रेट क्यों होता है, और अगर सब कुछ लिखा नहीं है और सब कुछ हम ही लिखते हैं तो कभी कभी कंट्रोल क्यों नहीं होता? ऐसा सवाल ना मेरे मन में अक्सर आते रहता है। मैं सोचता हूँ यार लाइफ की क्या चल रहा है। और देखो डेस्टिनी कहती है जो होना है वो होके रहेगा, और जब हम लोग बात करते हैं अपने फ्री विल की तो वो कहती है कि जो तुम चाहोगे वही होगा, जो तुमने एक बार ठान लिया वो तो होके रहेगा। तो एक तरफ लिखी हुई कहानी है तो दूसरी तरफ हमारा खुद का पेन है। तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है, आपने कुछ प्लान किया है और कुछ और हो गया हो और लाइफ ने कुछ और टर्न ले लिया हो? अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो फोन उठाओ और अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताओ कि क्या क्या चीजें आपने सोची थी और वो हो गई, या फिर आपने क्या सोचा था और वो नहीं हुआ। नंबर है मेरा 9654896896। इस पर कॉल या मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। और आज रात को ना सोने से पहले जरूर सोचना कि क्या आप अपनी लाइफ के एक कैरेक्टर हो या फिर एक ऑथर हो। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये गाना। Right.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट।

0: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
0: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
0: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

लिखते हैं। कुछ लफ्ज मोहब्बत की स्याही में डूब कर लिखे जाते हैं और कुछ कहानियां बस दिल से दिल तक पहुंचने के लिए जन्म लेती हैं। और अभी वही सफर शुरू हो गया है जहां फासले मिटते हैं और मोहब्बत की आवाज आपके कानों से होते हुए आपके दिल में उतरती है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। और ये खास सा जो सफर है, ये जो खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना, जहां हम सिर्फ शेरो शायरी नहीं सुनते बल्कि हम उन अल्फाजों में छुपी मोहब्बत को महसूस करते हैं, उस दर्द को समझते हैं जिनका इलाज सिर्फ एक आह नहीं है, और उन हंसी को भी संजोते हैं जो किसी खास के नाम शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। तो आज फिर इस महफिल में मैं आपको ले चलूंगी उन शायरों की गलियों में जहां हर मोड़ पर एक एहसास खड़ा है, हर चौराहे पर एक मोहब्बत आपका इंतजार कर रही है और हर धड़कन एक शेर बनकर आपकी रूह को छूने के लिए तैयार है। तो आज एक ऐसे ही शायर के बारे में बातें होंगी जिन्होंने इश्क को जिया था। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर 1, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई shaadi.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

वैसे अचानक से कोई ये सवाल आपसे पूछ ले, है इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो लीजिए पेश है पहला शेर और शुरुआत होगी आज उस खूबसूरत से शायर से जिन्होंने मोहब्बत को जिया, जिनकी मोहब्बत अधूरी रह गई लेकिन अमर भी हुई, और नाम है इनका साहिर लुधियानवी, जो हमारी हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है। और कहते हैं मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप वही है जो सिर्फ महसूस हो, जिसमें पानी की जिद ना हो, बस चाहने की ख्वाहिश हो। और शायद इसीलिए साहिर लुधियानवी की शायरी में हमें मोहब्बत एक सुकून और दर्द के साथ मिलती है। 1913 में लुधियाना में इनका जन्म हुआ। बचपन में पिता से अलगाव, जवानी में मोहब्बत की नाकामी और तन्हाई, इन सब ने उनकी कलम को एक ऐसा रंग दे दिया जो मोहब्बत के साथ साथ इंतकाम, समाज और इंसानियत के रंग भी समेटे हुए था। ये बहुत ही खास से शायर हैं और इनकी जो शायरी है जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये जिंदगी में भी तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती ही है। और साहिर का नाम अगर मैंने लिया है तो अमृता का नाम ना, ऐसा नहीं होगा। साहिर का इश्क अमृता प्रीतम के साथ अधूरा रह गया और ये सब जानते हैं, लेकिन इस अधूरेपन ने उनकी शायरियों को अमर कर दिया। मतलब यार ये शायरों की खास बात होती थी कि वो अपनी मोहब्बत बेशक अधूरी छोड़ दें लेकिन पन्ने जरूर भर दिया करते थे उसी मोहब्बत के नाम जो अधूरी रह गई। ऐसे ही इनके कुछ किस्से हैं जो बहुत ही खास हैं, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं इन्होंने जो लिखा है उस पर कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो ये परेशानी है भाई, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी मत होना, ये पहली शर्त प्यार की होती है, ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन कितनी सीधी सी बात है ना, लेकिन दिल को आर पार चीर देने वाली बात है। साहिर की खासियत ही यही थी कि वो मोहब्बत को सिर्फ दिल और फूल में नहीं बांधते थे, बल्कि उसके पीछे का दर्द, समाज की बेरुखी और इंसान की मजबूरियां भी दिखाते थे। तो ऐसे ही कुछ बातें और ऐसे ही इनके कुछ किस्से मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन फिलहाल गाना सुनते हैं। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: था तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी

चित्रा की आवाज में है ये बहुत ही प्यारा सा गाना और एआर रहमान साहब ने इसको कंपोज किया है। लिरिसिस्ट है महबूब और फिल्म है बॉम्बे। और कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो लगता है कि आज के टाइम में बड़ा ही मुश्किल है यार ऐसे गानों को बनाना, जो उनमें फीलिंग्स होती हैं, जो उनमें वो कनेक्टिविटी होती है कि जो सीधा हमारे दिल तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद को इमेजिन करने लगते हैं उस गाने में। ऐसे गाने बड़े मुश्किल हैं आज के टाइम में बनने। खैर, इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और खासा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिल लुधियानवी साहब के बारे में बातें चल रही हैं। बहुत ही सीधी सी बात बोलते हैं लेकिन दिल को आर पार कर देती है ये बातें। और उनकी एक ना खास सी नज्म है जिसका नाम है ताजमहल। वो अगर आपने सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई है उसमें। जहां उन्होंने शाहजहां के इश्क को सलाम करने की बजाय उनके इश्क की हकीकत पर सवाल उठाए हैं कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, कि ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगों से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे बज्मे शाही में गरीबों का गुजर क्या है। चलिए इस बात को आपको बहुत ही सरल सी भाषा में समझाती हूँ। साहिर जहाँ अपनी महबूबा से कहते हैं, ताजमहल तुम्हारे लिए मोहब्बत का एक निशान सही, तुम्हें इस खूबसूरत वादी से मोहब्बत ही सही, लेकिन मेरी महबूबा मुझसे

कहीं और मिला करो, क्योंकि ये शाही महफिलें गरीबों के लिए नहीं बनी है। जहां वो बादशाहत की ताकत के निशान है, वहां मोहब्बत की मासूम रूहों का जाना अच्छा नहीं होता। तुम्हें इस ताजमहल के पीछे छुपी हकीकत देखनी चाहिए। मतलब यहाँ उन्होंने ताजमहल को जो कनेक्ट किया है अपने इश्क से, वो बहुत खूबसूरत सी बात है, जिस बात पर कोई कभी सवाल ही नहीं उठा पाया। खैर, अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क शायराना। साहिर लुधियानवी के बारे में बातें चल रही हैं। साहिर की शायरी सिर्फ इश्क की तारीफ नहीं चाहती, वो मोहब्बत में ईमानदारी चाहते हैं, खामोशी में गहराई चाहते हैं। और वो कहते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये महज एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में मोहब्बत, तन्हाई और एक पूरे रिश्ते की कहानी लिखी गई है। आज के दौर में जब इश्क को दिखावे में जीने का चलन है, वहां साहिर हमें याद दिलाते हैं कि मोहब्बत का असली रंग खामोशी में है, वो जो सिर्फ दिल से महसूस की जाती है और शायद कभी पूरी नहीं होती। खैर, मैं इस बात को नहीं कहूंगी कि मोहब्बत वही असल है जो पूरी ना हो। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: कैसे।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर। डियर आपका सिंपल पासवर्ड स्कैमर्स की इनकम स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो अब से अपने पासवर्ड बनाओ जैसे पकवान, ताकि स्कैमर्स ना पहुंचा सके आपको।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
1: कुछ हटके
3: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क बाजिया में, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM. को

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है, लेकिन है। जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास से सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोर दा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे उनको कैसे प्यार हुआ, इसके बारे में बात होगी। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है, और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख। ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है, लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: के तले।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहाँ जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्कबाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्कबाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्कबाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दिया गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्कबाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, क्या कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं इस ट्रैक को।

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़े, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

हाय काश कि हम होश में आने ना पाए। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जाने। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिससे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूं। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पे आया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा। भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
0: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े घुमुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: चल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: बीजा सरकार।
1: सानू थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

ये सारी दुनिया अब अपना घर है, हार न मानेंगे ये खिलाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हमेशा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: मुस्कुराना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: वादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा, शादी का इरादा है। शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: ना, ना।
0: सुनो
1: ना,
0: तो
1: ना।
0: सुनो तो आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: आप यहाँ आए किस लिए?
1: आपने बुलाया इसलिए।
0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: जी देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला।

0: बजा दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

चाहिए वहीं से है तू ठीक, न नजरों में आ न मुझको तू देख, मैं तोड़ूंगा दिल तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच, बोली में थोड़ा रियान भी टच है, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है, बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ, BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी नाम।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
6: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कोई हमसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बांट रहा हूँ। श्री राम सुखदास जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी दिन में, और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में, हमारे साधन काल में एक क्षण ऐसा आया जब हमने अपने मन में ये संकल्प किया कि अब हम कोई संकल्प नहीं करेंगे। मन करेगा तो करेगा, पर हम

प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है। और यही समर्पण, जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

0: हूँ।
1: बूढ़त मोह सिंधु की दारा, काढ़ दया कर कर मुही पारा। रोगी वैद्य से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो और मैं डूबता जा रहा हूँ इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे पार करो। हो अति दीन महा दुख पावत, लोग कुटुंब को मुंह ना लावत। क्या आवश्यक है जीवन में अपनी ये झांकी देखना, क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें। ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है। लेकिन धाम में कैसे रहना है, साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें। और यहां की बात करूं तो मैं तो आपको सदा कहता हूं कि भाई आपको मुझे तो प्रियालाल ने अपने घर में रखा है। ये राधा मोहन का निज मंदिर है ये वृंदावन धाम। यहां तो एक ही विधि है बसने की कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहां पर उपासक बनकर रहिए, यहां पर साधक बनकर रहिए। भजन रसमयी विपिन धर, समझ बस है जो कोए, प्रेम बीज तिही खेत ते तब ही अंकुर होए। और समय रहते चेत जाइए, सबसे अमूल्य निधि, सबसे अमूल्य संपत्ति आपका जीवन है। और जीवन क्या है, जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। यही समय आपकी संपत्ति है,